लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पर दी गई है, जो थके थके से तो हौसले।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

न जब तुम यहाँ हो, मगर ऐसा तब हो न जब हो।

0: system that is love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

0: nigga, smack him back.
1: Yeah.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: In the way to start, this is the manner in the house. Come on, all the way.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

रास्ते भी अजनबी हैं, चेहरे भी अजनबी हैं, बेचारगी है हर तरफ, बेगानगी है। कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हेलो,

0: 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत ख़्वाब नियत चू इना हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ان وام سوما تیوا ای نری وام است سومغا نون کن ہسک ستو سولن ستو ہائٹ پو ہمنن ویر اینست دی اور تیمپرٹور ستی تی اوور 30 گرادر فولن سانگ فرا دی گرنے تریر اور دفتن اف نیسلوت گراس بریدے سی ای لفتن برننے نود در سومرفیری. De cyklede til stranden, byggede sandslotte og hoppede i det kølige hav for at blive afkølet. Nogle spillede fodbold i parken, mens andre spiste is i skyggen under store træer. Om aftenen samlede familierne i haverne. Grillen blev tændt, og duften af grillede pølser og majs fyldte luften. Folk sad længe udenfor, fortalte historier, og så solen går langsomt ned, mens himlen blev fra orange, pink og lilla. Selvom varmen nogle dage var næsten for meget, fandt alle små måder at nyde sommeren på. De drak masser af vand, søgte skygge midt for dagen og tog en dukker, når solen blev for stærk. Da sommeren nærmede sig til sin afslutning, begyndte dagen langsomt at blive kortere, men minderne om de lange lyse aftener, de kolde is og de glade stunder med familie og venner vil vare længe. Det blev en sommer, som mange vil huske. Ikke kun på grund af varmen, men fordi den bragte mennesker tættere sammen og gav dem tid til at nyde de enkle glæder i livet. Tusind tak fordi du lyttede med. Vi ses næste gang.
2: فیصل ایوب جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، نوجوان ہیں، بڑے متحرک ہیں، مسلم لیگ نواز سے ان کا گہرا تعلق ہے، لکھتے بھی رہتے ہیں سوشل میڈیا پر اور اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنا محنت مزدوری کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت وہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ اپنی پارٹی کی طرف سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اپنے گروپ کی طرف سے۔ تو فیصل، آپ کو ایک بار ادار آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
3: بہت مہربانی، شکریہ۔
2: فیصل، سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیں تاکہ ہمارے سامعین ناظرین کو پتا چلے۔ جو میرے پاس تھا وہ تو میں نے کہہ دیا۔
3: صاحب، آپ نے جو تعارف کروایا ہے وہ تقریباً تو ٹھیک ہے، بس ایک دو چیزوں کا آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ اپنے گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، میں کسی گروپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، میں مسلم لیگ نون کا ڈنمارک کے اندر انفارمیشن سیکٹری ہوں اور نوٹیفیکیشن پہ یہ جو ہے عہدہ میرے پاس ہے۔ اس سے پہلے میں جوائنٹ سیکرٹری رہ چکا ہوں، تو کوئی گروپ نہیں ہے، گروپ کی بات نہیں ہے ابھی تک تو جو نوٹیفیکیشن ہے۔ ہاں، اختلاف ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، کچھ بندے ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، لیکن میں کسی گروپ کے ساتھ نہیں، میں جو ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہوں۔
2: زبردست، آپ گروپ کے ساتھ نہیں ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ تو فیصل، آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ خود جو ہے وہ ایک میڈیا کو دیکھتے رہتے ہیں، واچ کرتے رہتے ہیں، تو آپ جو گرمی کا حال دیکھ رہے ہیں، تو گرمی کے متعلق سب سے پہلے تو یہ سوال آپ سے کریں، کیسی ہے گرمی اور کام پر کیسے حالات ہیں؟
3: ابھی تو جو ڈنمارک کے اندر حالات بنے ہوئے ہیں گرمی کے، بلکہ پورے یورپ کے اندر وہ گرمی کی شدت آئی ہوئی ہے۔ یورپ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسٹرن یورپ کو تو اس چیز کا پہلے ہی کبھی کبھی اندازہ ہو چکا ہے، کچھ سال پہلے بھی، لیکن ڈنمارک کو اور اسکینڈینیویا کو یہ پہلی بار کوئی اس طرح کی گرمی کو زیادہ جو ہے عروج آ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، لوگ ابھی تو گاڑیوں میں اور اب تو دکانوں پہ پنکھے بھی ختم ہو گئے ہیں، اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اے سی کی بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ وہ ڈنمارک کے اندر جو ہے وہ شروع ہونا ہو گئی ہے۔ تو گرمی اپنی شدت پہ ہے، رات کو بارش ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد لگتا ہے ایسے ہی تھا کہ موسم ٹھیک ہوگا، لیکن اس کے بعد زیادہ آبس ہونے کی وجہ سے گرمی اور تیز ہوگی۔
2: لیکن جس برانچ سے آپ کا تعلق ہے، یہ برانچ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ نے پیسنجر کو کون کون سی سہولیات دینی ہے اور آپ کو کون کون سی سہولیات ملتی ہیں؟
3: پیسنجر کو سہولیات تو یہی ہے کہ ڈیمانڈ اے سی کی، میری ایک گاڑی کی کل تھوڑا سا مسئلہ بن گیا ہے کہ اس کا اے سی کی گیس جو ہے وہ ایک دم چلتے چلتے ختم ہوئی ہے، کولنگ ختم ہوئی ہے، تو کسٹمر نے بڑا احتجاج کیا ہے کہ وہ اینڈ پہ اتتے وقت مجھے کال آئی ڈرائیور کی، اس نے بولا کہ वो कस्टमर कह रहा है कि मैं पैसे नहीं देता कि आपकी गाड़ी का एसी नहीं है, तो ये अभी एकदम ही एसी का मसला हुआ है, एकदम उसने कूलिंग खत्म की है। तो फिर वीकेंड था, उसी वक्त मैकेनिक के साथ रब्ता किया, एक मैकेनिक मिला तो उसको जो है वो ठीक करवाना पड़ा। तो डिमांड तो यही है कि सर्विस तो हर काम पे आपको पता है, बगैर क्वालिटी तो आपको देनी पड़ती है, सर्विस आपको देनी पड़ती है, सर्विस के ही सारे चार्जेस हैं आजकल। तो इसलिए डिमांड जो है वो जारी बात है, जब ज्यादा सर्दी है तो हीट की डिमांड ज्यादा है, तो अभी जब गर्मी अपनी शिद्दत पे है तो फिर एसी की है। तो बाकी तो आपको पता है यहाँ डेनमार्क के अंदर उस तरह की कोई मसला नहीं है कि गाड़ियां पुरानी हो, यानी सारी एक से एक बढ़कर अच्छी और जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, तो वो उसका इतना मसला नहीं आता। खुश होते हैं, वो कहते हैं कि इधर तो बहुत अच्छी गाड़ी है और टैक्सी की सर्विस जो है वो क्या कहते हैं कि जो दूसरे मुल्कों से कंपेयर की जाए वो तो बहुत ही हाई क्लास की है डेनमार्क के अंदर।
2: फैसल, आजकल बच्चों को टोपियां मिली हुई हैं, सब बच्चे मुबारकबाद के मुस्तक है, मेहनत की उन्होंने, अपनी टोपियां मिली हैं। ये ट्रक में आपको आवाजें आती रहती हैं, आपको भी आ रही हैं, तो ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम तो नहीं होता?
3: ट्रैफिक जहरी बात है, वो थोड़ा सा निजाम तो धर्म भरम नहीं होता, लेकिन ये है कि ट्रक का कोई गाड़ी आगे लग जाती है तो अभी मैं भी अपनी तरफ से जो है तमाम जितने भी स्टूडेंट बने हैं उनको के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। आगे आज मेरे अपने कजन की गाड़ी आ रही है, मैं अभी घंटे दो तक हम उधर ही होंगे, तो बस यही है कि अच्छी बात है। तो लेकिन यह है कि अच्छा इंजॉय किया ने, चार पांच दिन होते हैं उनका, उनके लिए जिंदगी के एक यादगार दिन होते हैं, तो वो अपने गुजारते हैं, हम इससे गुजारा कर लेते हैं। ट्रैफिक का अपना जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ट्रैफिक की जो बनी हुई है डेनमार्क के अंदर इस टाइम कोपेनहेगन के अंदर, वो रोड वर्क की वजह से बनी हुई है। और इस बार पता नहीं गवर्नमेंट ने कौन से पॉलिसी साजों के साथ बैठकर ये बात की है कि सारे रोड को ना एक एक वक्त पे ही बनाना है, एक दो महीने के अंदर खत्म करने हैं। जिस तरफ जाएं आप कस्टमर बैठा लें, आप हो सकता है 120 करोड़ का टूर हो तो आप जाएं आगे रोड बांधे, कोई कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि हर किस्म के। मैं समझता हूँ कि कोपेनहेगन सेंट्रम वेस्ट्रोब्रो ओस्ट्रोब्रो, आप खुद सेंट्रम के अंदर रहते हैं राय साहब, आपको पता है तकरीबन हर रोड ही जो है ना वो काम पे लगा हुआ है। जहाँ रोड नहीं है वहां स्टीलेस वाले आ जाते हैं, बिल्डिंग का काम शुरू हो जाता है, तो इस वजह से काफी ज्यादा मसले बने हुए हैं, सिर्फ ट्रैफिक इस वजह से बहुत ज्यादा जाम है।
2: लेकिन ये जो साइकिलों का बड़ा रिवाज है, बड़ी साइकिलें हैं, बड़े साइकिलों के नाम से डेनमार्क बड़ा पॉपुलर है, तो साइकिलों को प्रायोरिटी दी जाती है और ट्रैफिक का निज़ाम, खासकर आप तो हर वक्त गाड़ी चलाते हैं, तो साइकिलों की वजह से आपको डिस्टर्ब तो नहीं होते?
3: ये साइकिलों की वजह से, साइकिलें तो अभी समर में, विंटर में तो फिर भी राय साहब गुजारा हो जाता है, समर में तो अभी साइकिलों की तादाद बहुत सख्त हुई हुई है और आगे बहुत ज्यादा तेज हुई हुई है। और अभी आपको पता है पेट्रोल की प्राइसें हाई होने की वजह से, फिर कुछ शहर के अंदर पार्किंग की प्राइसें ज्यादा करने की वजह से और पार्किंग की जगह कम होने की वजह से बहुत ज्यादा मसले हैं। लोग शहर के अंदर जो है वो तकरीबन सिटी के अंदर जो है वो साइकिलों को इस्तेमाल जो है ना वो ज्यादा कर रहे हैं।
2: फैसल, जब आप गाड़ी चार्ज करते हैं तो गाड़ी का टाइम होता है 3 घंटे या 3.5 घंटे चार्जिंग के, उसके बाद अगर वहाँ गाड़ी आप खड़ी करते हैं तो वो फिर आपको जुर्माना हो जाता है, ये भी एक सजा नहीं है गाड़ी वाले के लिए?
3: वो सजा तो सजा है, बहुत सारी सजाएं। अब जारी बात है जब उन्होंने बिजली वाली गाड़ियां एलपी ने शुरू करनी थी इधर, उस वक्त तो बड़ी सहूलतें दी हैं, तो लेकिन अब आस्ता आस्ता उनके लिए भी मुश्किलें बन रही हैं। और अब तो हर जगह पे वो इसी तरह है, अब बहुत से जो बिजी चार्जर हैं उसके ऊपर, अगर फास्ट चार्जर हैं उसके ऊपर भी आपकी गाड़ी की 80% हो जाती है चार्जिंग, तो आपने गाड़ी उधर से हटानी है। अगर 80 से ज्यादा होगी तो ज्यादा, तो वो भी जुर्माने वाले आके आपको गुस्सा करेगा, या दूसरा जो लाइन में लगेगा वो भी गुस्सा करेगा कि 80% होगी या निकलो सारे कि अगली की बारी आए।
2: मेरा सवाल आप नहीं समझे, अगर आप गाड़ी चार्जिंग के लिए लगा जाते हैं नॉर्मल चार्जिंग, तो उसका 3 घंटे टाइम है, 3 घंटे अगर आप गाड़ी हटाते नहीं है तो आपको जुर्माना हो जाता है, इसका मतलब वो टाइम आप किस तरह गुजारते हैं?
3: 3 घंटे वाले ज्यादातर जो है स्लो चार्जर जो है वो तो क्या कहते हैं वो इसी तरह ही वही इस्तेमाल करते हैं जो प्राइवेट गाड़ियां, जिनके अगर किसी जगह पे जाना है तो 2-3 घंटे का काम है, तो वो इस तरह ही वो लगाते हैं ना। तो ज्यादा लोग जो टैक्सी ब्रांच जो है वो ज्यादा फास्ट चार्जर यूज करती है, किसी के घर के बाहर है तो वो रात वाला लगा देते हैं। ये ज्यादा शहर के अंदर है कि 3 घंटे या 4 घंटे की पार्किंग है, वो फिर उनको वो उसका ख्याल रखना पड़ता है।
2: तो आपके ख्याल में तो फास्ट चार्जिंग में और स्लो चार्जिंग में कोई फर्क पड़ता है, या कि स्लो चार्जिंग जो है उससे कोई मतलब गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फास्ट करें या स्लो करें?
3: नहीं नहीं, गाड़ी स्लो चार्जर को जो है वो इतना फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन स्लो चार्जर डेफिनेटली जो है सब वो टाइम लेता है, तो उसके 3 घंटे के अंदर तो इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि 11 किलोवाट का चार्जर होता है तो वो काफी टाइम लेता है।
2: मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ कि फास्ट चार्जर से गाड़ी को तो कोई नहीं फर्क पड़ता।
3: नहीं नहीं, गाड़ी के इतना फर्क नहीं पड़ता फास्ट चार्जर से, क्योंकि दो डिफरेंट किस्म की बैटरियां आ रही हैं। कुछ जो चाइनीज गाड़ियां हैं वो अब 100% पे आप ले के जा सकते हैं, जो मर्सिडीज हैं, फल्के वोन है या ओडी की गाड़ियां हैं जो जर्मन या यूरोपियन की बनी हुई है, वो उनकी जो बैटरी है वो 80% तक आपने चार्ज करनी होती है। जो इधर आप चाइनीज गाड़ियां ये तो वो कहते हैं कि आप इसको बैटरी को आप कम से कम हफ्ते में 1-2 बार 100 के ऊपर लेके जाएं, ना तो वो करते हैं। मेरी अपनी गाड़ी के साथ थे, किया थी जिसके साथ प्रॉब्लम हुई है, तो वो इस
2: फैसल आते हैं। ये तो सारी बातें साथ साथ चलती रहेंगी। फैसल, आप नौजवान हैं और आप एक पाकिस्तानी सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि आप यहाँ डेनमार्क में रहते हैं, तो क्या पाकिस्तान की सियासत करनी चाहिए या डेनमार्क की सियासी पार्टियों की करनी चाहिए, आप क्या कहेंगे?
3: ऐसा मैं तो आपको जो सही बात है ना वो मैं ये कहता हूँ कि हमें डेनमार्क की सियासत करनी चाहिए। डेनमार्क की सियासत में बहुत ही अहम किरदार है। पाकिस्तान की सियासत मैं समझता हूँ, आप में आप इधर लिखते हैं कि मेरे साथ भी आपने लिखा हुआ था जब आपने अपना मोनो चलाया कि नौजवान सियासतदान। मैं समझता हूँ कि ना मैं सियासतदान नहीं हूँ। मैं अगर मैं डेनमार्क के अंदर सियासत करता ना, इधर सियासतदान है हमारे भाई है सिकंदर, सिकंदर भाई हैं वो सियासतदान है, अपने क्या कहते हैं जहेर है उसने इलेक्शन जो इलेक्शन लड़ते हैं वो है, कासिम भाई हैं, राशिद भाई हैं, ये सियासतदान है इधर। ये हम लोग बस ये है कि अपनी अपनी एक पसंदीदा पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपना एक होल्ड जो है या अपना एक ग्रुप अपनी
2: मतलब
3: पार्टी का
2: इसको एक शुगल कह सकते हैं।
3: ये शुगल मेला है, शुगल मेला है, खाना पीना है, मिल बैठने का एक बहाना है। अगर कोई मसाइल हो जाए तो आप अपनी पार्टी, अगर जिसकी हुकूमत में हो तो कोई मसलन PIA का मसला है, कोई ID कार्ड का मसला है बनाने का, या कोई पासपोर्ट है तो आप अपनी पार्टी को भी कह सकते हैं, एम्बेसी को भी साथ मिला के तो एम्बेसी के साथ आप बात कर सकते हैं, तो वो जाके तो इस तरह के। लेकिन शुगल मेला है, आपको भी पता है ये।
2: असल आप जिसको शुगल मेला कह रहे हैं इसमें तो आप लोग सब फिर डिवाइड हो जाते हैं, रंजिशें पैदा हो जाती हैं, इसको हल कैसे किया जाए?
3: साहब ये तो क्या कहते हैं क्या है, बहुत बड़ा अलमिया है, ये पाकिस्तान की सियासत का है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर ये मसला है कि हम लोग मिलके एक जगह पर बैठ नहीं सकते उस तरह के, अगर बैठते हैं तो उस पर भी डिवाइड हो जाते हैं, तो अगर किसी भी इशू पे हमारा कोई इख्तलाफ होता है तो हम उसको जाती इख्तलाफ बना लेते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, कोशिश तो बहुत करते हैं कि ना हो। आपको आपको पता है इधर भी हमारी जो वो भी भाई हैं हमारे पाकिस्तानी पीपल पार्टी वाले हैं, वो PTI वाले हैं, काफ लीग वाले हैं, हमारा तो यही होता है कि वो हमारे भाई हैं, हम पहले हैं, हम एक प्लेट में हमने खाने खाए हुए हैं, इकट्ठे बैठते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ ही रहें, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ ना पैदा हो। तो इसी वजह से हम भी मुस्लिम लीग जब से हमारा ये नोटिफिकेशन हुआ है हम इसी चीज पे है कि कम्युनिटी को साथ लेकर चलें कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की तरफ से एक आवाज बने, तो कम्युनिटी को इसलिए हम साथ लेके चलते हैं। सिर्फ हमने जितने भी प्रोग्राम अभी सदर साहब की क्यादत में किए हैं, जब से मैं आफ्ताब भूमी साहब सदर बने हैं, हमने कम्युनिटी की सतह के प्रोग्राम किए हैं किसी जगह पे। हाँ, अपनी जो महाना मीटिंग है वो हमने मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन अगर जब हमने कोई भी प्रोग्राम किया है 14 अगस्त का, 28 मई का, 25 दिसंबर का, जो भी किसी किस्म का भी प्रोग्राम है, 23 मार्च का, तो हमने कोशिश की है, हमने एम्बेसडर साहब को भी दावत दी है, एम्बेसी को भी दावत दी है, कम्युनिटी के हर फोरम को हमने ना दावत दी है।
2: अपना तो बात ठीक कह रहे हैं फैसल, लेकिन देखा है कि सियासी जमातों की वजह से कम्युनिटी डिवाइड हो जाती है।
3: साहब, मैं तो इस तरह नहीं समझता कि कम्युनिटी डिवाइड होती है। वो चंद सियासतदान या मीडिया की नजर से अगर कोई देखा जाए तो वो इख्तलाफ को वो इस तरह देखा जाता है। अभी भी आप अगर देखा जाए तो कम्युनिटी का डिवाइड का ये है कि हम किसी की खुशी गमी में ना जाएं, हम कुछ ऐसे मसाइल हो जाएं, किसी को मदद की जरूरत है, हमारे पीटीआई वाले भाई को या हमारे पीपल पार्टी वाले भाई या काफ लीग वाले को, तो हम उस जगह पे उसकी खुशी गमी पे हाजिर ना हो, तो ये डिवाइड है। हाँ, नजरिए का इख्तलाफ है, उनका अपना लीडर है, उसका अपना नजरिया है, हमारा अपना लीडर है, हमारा अपना नजरिया है, तो ये इसमें इतनी कोई बात नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं कि मिलके बैठें।
2: फिर इसका मतलब अपना अपना पीर आप रखते हैं?
3: वो तो फिर मजबूरी है, पीर भी यार किसी का अपना अपना है, उसके आपको पता है कि, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि इख्तलाफ को जो है वो सियासी इख्तलाफ को सियासी इख्तलाफ की तरह ही देखा जाए, कोई जाति या कोई इस तरह का ना बने। तो बाकी लीडर जारी बात है, हर किसी का अपना होता है, हर किसी का अपना नजरिया होता है, हर किसी का अपना तरीकाकार होता है। समटाइम एक ही तरीके काम होता है लेकिन उसके करने के तरीके जो है डिफरेंट होते हैं, उस पर भी समटाइम वो एक पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ आ जाता है।
2: फैसले इख्तलाफात आ जाते हैं तो इख्तलाफात पार्टियां खुद हल करती हैं ना, ये जाए के दूसरों की तरफ चले पड़ते हैं कि हमारे इख्तलाफात दूसरे ठीक नहीं करने देते।
3: नहीं, मैं इसको राय साहब को इतनी आप इस बात को समझा नहीं हो कि कौन किस तरफ चला के दूसरों की तरफ, तो कोई भी इस तरह जो दूसरों की तरफ जाते हैं वो फिर जारी बात है वो डिवाइड होते हैं। वो ये तो नहीं है कि आप कहें कि वो दूसरा तो आगे और ही काम खराब करेगा,
2: और ही काम खराब, इसलिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने मंशा ने ज्वाइन कर लिया, ये भी नौजवान है। मंशा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
4: जी बहुत शुक्रिया राय साहब, आपको और हाजी फैसल अय्यूब साहब आपके मेहमान हैं, इनको और आपके तमाम।
2: आपने फोन किया क्योंकि आज तो हमारे हाजी फैसल मेहमान थे, आपने फोन किया तो हमने उठा लिया फिर, क्योंकि आपकी तरफ से सबकी तरफ से शुरू हो जाता है, हमें बात करने का मौका नहीं मिलता।
4: नहीं जी, आपने खुद ही बोला हुआ, जिसको भी दिल करता है कॉल करें, और मैंने कॉल की, आपने उठा लिया, आपका बहुत शुक्रिया जी। गिला तो हमें कभी भी नहीं करते जी, हमने कभी नहीं गिला किया, तो ये कि आपकी मोहब्बत है जी, आपने हमारा फोन उठा लिया। आज हमारे माशाल्लाह यंग और क्या कहते हैं जी, जवान और माशाल्लाह हाजी अभी अभी हाज करके आए, अल्लाह पाक इनका हाज कबूल करेगा। हमारी तरफ से, आपकी तरफ से और सबकी तरफ से मुबारकबाद भी देते हैं। तो गुफ्तगू सुन रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था, मैंने कहा चलो मैं भी इसमें थोड़ा सा शामिल होता हूँ, इसलिए मैंने कॉल कर लिया। मेहरबानी आपकी, आपने फोन उठाया।
2: मंशा, आपकी तरह हाजी फैसल ने भी कहा है कि सियासत हमें जो है यान डेनमार्क की करनी चाहिए।
4: इसमें तो कोई राय साहब, ये तो एक कॉमन जो कहते हैं जी, एक कॉमन मकूला है, कॉमन एक कॉल है कि हम ये सब बातें तो यही कहते हैं, आप भी कहेंगे, मैं भी कहूंगा, और जब आम पार्टी के लीडरान और जितने कारकुन यही कहेंगे कि यहाँ की सियासत करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ नहीं लेके आनी चाहिए, तो लेकिन प्रैक्टिकली हम इससे बिल्कुल भी इस पे नहीं चलते, क्योंकि हम जब घर में बैठते हैं, जब किसी मजलिस में बैठते हैं, जब कहीं आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप चाहे कहीं भी बैठते हैं, हर बंदा ये सोच ले कि वहां पर जाके बैठ के किसने बात की है कि अभी इलेक्शन हुए हैं, अभी डेनमार्क की गवर्नमेंट बन चुकी है, उसके बारे में कभी भी किसी मजलिस में महफल में कभी बात नहीं हुई। जब भी जहां भी जाएंगे, शादी में जाएंगे, मजलिस में जाएंगे, महफल में जाएंगे या किसी भी घर में जाएंगे, तो वहां पर हमारी सियासत की बात ही करेंगे, पाकिस्तान सियासत की बात ही करेंगे। फिर हम कहते हैं कि हम उस सियासत को लहदा रखें, डेनमार्क की सियासत को लहदा रखें, हम यहाँ की सियासत करें, वहां की छोड़ें, और ये चीजें बिल्कुल कहने के हद तक तो बहुत अच्छी हैं। प्रैक्टिकली ऐसा मैंने तो इसके ऊपर कोई अमल होता नहीं देखा हुआ।

0: काश होती है। लेकिन धूप में काम करने वाले, और ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है ऐसे वर्कर्स के जो जो धूप में काम करते हैं, खासतौर पर कंस्ट्रक्शन के वर्कर या सफाई के वर्कर जो है शहरों के अंदर जो सड़कों पे काम करते हैं, या और दीगर ऐसे लोग के जो खुले आसमान के तले बैठ कर जो है अपना काम करते हैं, उनके लिए जो है ये ऑफर दी है कि वो टाइमिंग अपनी तब्दील कर लें काम की, और ऐसी टाइमिंग रखें कि जिसमें धूप जो है उसका सामना उनको ज़्यादा ना करना पड़े। तो ये इस हवाले से काफ़ी तदवीरें हैं। फिर लोगों को एहतियात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर बताया जाता है कि आप इस तरह का जो है मामला ना करें, घर से निकलें तो कपड़ा सर पर लेकर निकलें, अपने आप को जो है वो ढाँप कर निकलें, या छतरी जो है वो उसका साथ रखें ताकि वो आपको धूप से जो है वो बचा के रखे। तो जो बच्चों को तो वैसे ही छुट्टियाँ स्कूलों में, तो उस हवाले से तो कोई ख़ास ऐसा मामला नहीं है।
1: मिर्ज़ा साहब, हमें नहाने का बड़ा शौक़ होता है और समुंदर में जाकर लोग नहाते हैं, डुबकियां लगाते हैं, लेकिन आपको पता है टेम्परेचर में जब बंदा बाहर निकलता है तो टेम्परेचर हाई होता है, अंदर जाता है तो फिर वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में कहते होते हैं वो बखोर पड़ जाते हैं, कड़ल पड़ जाते हैं वो, आप जो है वो तो उसकी वजह से भी अमवात वाक़ हो सकती है, फिर बंदा जो है तैर नहीं सकता, टांगे चला नहीं सकता।
0: तो लेकिन जो मैं आपको बताऊं कि गर्मी का जो तोड़ यहाँ पे है ना पाकिस्तान में, जैसा होता है कि आप नहर पे चले जाते हैं तरबूज लेके और दुहाना पानी छूट के नहाना, तो यहाँ पर भी जो है ना सबसे बड़ा इनका जो गर्मी का तोड़ का जरिया है ना, ये तो समुन्द्र समझते हैं। ये तो हमारे लोगों की सोच है कि वहाँ पर कुडल भर जाते हैं या कोई इस तरह का मामला हो जाता है, लेकिन इन लोगों को एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये जो है वो बीच के ऊपर जाकर अपने आप को बहुत ईजी महसूस करते हैं, और इसके हवाले से इनका जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो गैदरिंग होती है। बल्कि आजकल जो है स्पेन बल्कि अपने बीचेस की वजह से ज़्यादा मशहूर है, और अपने मौसम की वजह से, क्योंकि जो गर्मी यहाँ पे पड़ती है और वो बीच पर जाकर नहाना वो जो है वहाँ पर ये जो है यहाँ की बहुत ही जो है महबूब मशाला होता है गर्मियों के दिनों में, और इसी हवाले से लोग जो है वो स्पेन का रुख करते हैं छुट्टियों में।
1: मेरे साहब, आपने जिक्र किया कि लोग स्पेन का रुख करते हैं, टूरिस्ट तो बहुत आता है स्पेन में, इसमें कोई शक नहीं है, ये जो सियासी टूरिस्ट आता है खासकर अपने ममालिक से, वो टूरिस्ट कितना आया हुआ है?
0: सर नहीं, वो आजकल कम हुआ है, पता नहीं क्या वजह उसकी, वरना पहले आते थे, लेकिन जो आते भी हैं तो वो छुप छुपा के आते हैं, यानी कि वो पब्लिकली अपने आप को जो है वो नहीं पेश करते। तो वो ये है कि वो ज़्यादातर ऐसे इलाकों पर आते हैं कि जैसे यहाँ के आइसलैंड है, तो वो किसी आइसलैंड पे आके जो है वो डेरा लगा लेते हैं, तो वहाँ इतने लोग होते भी नहीं कि जो उनको पहचान सकें, तो लिहाजा वो उधर से चले जाते हैं। लेकिन जैसे कि बार्सिलोना, आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो बहुत बड़ा हब है पाकिस्तानियों के हवाले से भी, तो वहाँ पे जो है उनकी अपेयरेंस बहुत कम होती है, अगर होती भी है तो पिछले दिनों भी एक सियासतदान आए थे तो मुझे एक टैक्सी ड्राइवर बता रहा था दोस्त कि उसको उसने हायर किया है, लेकिन उन्होंने कहा वो चूंकि पाकिस्तानी था ड्राइवर, तो उसने कहा कि जी मेरे बारे में ये लोगों को ना बताइएगा कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और वो पूरा हफ्ता यहाँ पर रह के गया है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई सर।
1: तो इन्हीं सियासतदानों को जब लोग वोट देते हैं तो शर्म नहीं आती जब सियासतदान ये कहते हैं कि मेरा बताना नहीं कि मैं इस मुल्क में मौजूद हूँ?
0: सर शर्म की बात तो खैर हमारी पूरी कौम के अंदर नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान के एक इस्लामी स्कॉलर थे डॉक्टर इसरार अहमद साहब, वो ये कहा करते थे कि पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत जो है वो मुनाफिक है, तो वोटर भी उसी तरह के हैं, लीडर भी उसी तरह के हैं, हर कोई जो है वो एक दूसरे को दा दप्पा लगाने के चक्कर में रहता है, तो लिहाजा आवाम भी वैसी है, वो जैसे वैसे भी कहा जाता है कि जैसियाँ रूहाँ वैसे फरिश्ते, तो जैसी हमारी आवाम है सर वैसे ही हमारे लीडर हैं, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वो ये जो है आप देख लें कि हालांकि सबको पता होता है कि इनकी गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया है या किस तरह का बिहेव किया है, लेकिन उसके बावजूद सर नारे हर दफा जो है वो इन लोगों के ही लगते हैं, और उन्हीं को ही वोट दिए जाते हैं, और उन्हीं के झंडे उठाकर जो है वो कौम फिर रही होती है, तो लिहाजा इस हवाले से ये ना कहें कि आवाम जो है उनको पता नहीं होता, पता भी हो तो वो कुछ नहीं कर सकते सर, वो फिर भी दस्ते निगर इनके हैं।
1: मिर्ज़ा साहब, हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे देख रहे थे, आप सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप खुद एक्टिव रहते हैं, कि मोनोसेलाई साहब एक नाम है, बड़ा नाम है पाकिस्तान का, जहाँ जो आपके पास या पता नहीं स्पेन में किस जगह पर या किसी आइलैंड में मौजूद है, वो काफ़ी डेरों पर जा रहे थे, बड़ी दावतें हो रही थी, क्या वो कम बैक है?
0: नहीं, कम बैक तो कोई नहीं है सर, वो चूंकि अब यहाँ पे रहते हुए अपनी प्रेजेंस भी शो करनी पड़ती है, फिर जो खासतौर पे उनके जो हल्के के लोग होते हैं वो जो शाह से ज़्यादा शाह से वफादार वाले, वो जो है वो इसमें ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाते हैं, और वो ये साबित करते हैं कि जी हमारे लीडर अब भी जो है बड़े फाल हैं,

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो दारा आपके आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम, जिस तरह हमने इंट्रो में कहा था, आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हम उस्ताद कहते होते हैं, गो के बहुत छोटे हैं हमारी उम्र से, लेकिन वो चूंकि स्कूल टीचर हैं तो इसलिए उनको उस्ताद कहा जाता है। इत्तेदाल पसंद पार्टी के वो अच्छे खासे सरगर्म रुकन हैं, हुज़्ब सुरसा के मेंबर भी हैं, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ा और आगे की भी तैयारियां, आइंदा आने वाले जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे उसकी भी तैयारियां भी से उन्होंने शुरू कर दी। उनको एडवांटेज है चूंकि वो लोगों से मिलते रहते हैं और नौजवानों से उनका जो है अट्रैक्शन रहता है, बातचीत भी उनकी चलती रहती है। तो ज़ीशान, एक बार फिर आपको अदर आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, और बहुत थैंक यू आपका इंट्रोडक्शन का भी। आजकल उस्तादी भी अल्लाह का शुक्र है अब गई हुई है, जरा छुट्टियों पे नई क्लासों की तैयारी हो रही है।
1: टीचर तो फिर उस्ताद ही होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, टीचर टीचर उस्ताद ही कहलाया जाता है उनको।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब, ने ये वाकई ये इसमें कोई शक, इस दफा वैसे भी मेरी क्लास थी, ग्रेजुएट भी हुई, उसका भी मतलब हमेशा ही जब कोई नई क्लास अपनी ग्रेजुएट होती है हर साल वो बड़ा अफेक्ट करती है। तो मैं अभी काफी अपने बच्चे दोबारा आगे भेजे, अल्लाह उनको कामयाब करे,
1: आमीन। ज़ीशान, हमने देखा कि हर वक्त गाड़ियों की आवाज़ें आती रहती हैं, चूंकि मैं ऊपर रहता हूँ, काफ़ी ऊंचा रहता हूँ तो देखता रहता हूँ, तो गाड़ियाँ हर वक्त आती जाती रहती हैं, हॉर्न बजते रहते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये एक ट्रेडिशन बना हुआ है, 3-4 दिन या 5 दिन चलता रहेगा छुट्टियों के दौरान, तो इसकी कहानी क्या है असल?
2: इसकी कहानी असल में पहले भी वही होता था, पुराने दिनों में भी जो बन जाते थे फाउल एयर या स्टूडेंट होते थे, मतलब शहर में घूमना, उनको जिस तरह सराहना, और वही ट्रेडिशन अभी तक चल रहा है, टोपी मिलती है, वो अपने शहरों में घूमते हैं और मतलब पब्लिक देखती है, घर घर विजिट करना, ये भी बड़ा अच्छा होता है, एक दूसरे के घरों को विजिट करते हैं। तो वैसे तो मुझे बड़ी फेवरेट ट्रेडिशन लगती है, मैं तो हर अपने स्टूडेंट को भी, हर बंदे को बोलता हूँ, मैं कह यार एक दिन जिंदगी का ना अगर दोबारा जीने हो तो ये स्तुतिन तक खेसल वाला दिन क्या दिन था। हर कोई आपको चेयर कर रहा होता है, मतलब आपने एक जिस तरह माइलस्टोन अचीव किया होता है, ये हम अगर थोड़ा भूल जाते हैं कि ये फाइनल माइलस्टोन नहीं है हमारे। कुछ लोग तो आजकल ऐसे मना रहे हैं कि जैसे बस अब बिल्कुल ही फारग हो गए, ये मतलब बड़ा एक माइलस्टोन होता है, मगर इसमें अब यह है कि इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद बच्चों ने आगे भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि खाली गिमनेशियम आपको कुछ और तो नहीं है फायदा देता, आपको एक चाबी है आगे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने की। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे हमारे सब बच्चे आगे जाके आगे भी कोर्स करें, जो उनसे मर्जी करें, तो फाइनल एजुकेशन करें अपने। तो ये
1: लेकिन बड़ा मजा आता है, मैंने देखा है कि टूरिस्ट आए होते हैं तो बड़े शौक से जो है वो तस्वीर बना रहे होते हैं, तो आगे से जो स्टूडेंट होते हैं वो भी बड़े आगे से बड़े बड़े फनी फिक्रे कसते हैं।
2: वो ऐसे ही है जी, और फिर पता है आपको हर चीज करते करते जिधर भी करो थोड़ी सी ओवर एग्जेजरेट हो जाती है। अब अगर आप थोड़ा सा अगर देखें डेनिस सोसाइटी के हवाले से, तो ये पीना इनका ज्यादा हो जाता है, उस पर भी मतलब बड़ा फोकस रखा गया हुआ है कि थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि गाड़ियों में चल रहे होते हैं और इतना एल्कोहल जो उनसा है, कुछ
1: लाजमन
2: कुछ
1: जगह पीना जो है इसे बैन होना चाहिए, आपकी क्या राय है?
2: बैन करना जी मुश्किल है इस मुल्क में, मगर कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो तो हम हमेशा से बात करते हैं, मतलब दैट्स अ बिग इशू जो हमेशा चलता रहता है कि एल्कोहलिज्म मतलब जितने घरों में और जितनी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उतनी और शायद कोई स्टॉफा करते हो, मगर क्या करें, इनके कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा है कि खत्म करने में बहुत डर रहे हैं सब।
1: ये कंट्रोल कर सकते हैं, शाम तक बच्चों को होश ही नहीं रहता
2: बिल्कुल, मगर ये मैं देख रहा था इस दफा, मैंने कुछ शाम वाली भी देखी है कि काफी बेहतर भी आए हुए हैं, कि कुछ चीजें बच्चे कंट्रोल करना सीख ही गए हैं, कि उन्हें भी पता है कि इतना भी खराब ना कर दो कि दिन याद ही ना रहे आपको, इतना आपका अच्छा दिन है कि उसमें आपको कुछ याद ही ना रहे, तो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना, अवेयर होते जा रहे हैं बच्चे इसमें। मगर ये बहरहाल आप दूसरी तरफ से ये भी देख सकते हैं कि हमारे लोग अब हम लोग एक दफा फिर बनने लगे हैं सुर्खियां,
1: वाह मैं उस तरफ आता हूँ, ये सुर्खियां हम लोग बनने लगे हैं। अब देखें कि इलेक्शन तो हो गए, کمیونز کے بھی ہو گئے, پارلیمنٹ کے بھی ہو گئے, سب کچھ مل گیا, حکومت بھی بن گئی, جو ہے وہ کمیٹیاں بھی مل گئیں, اب جو ہے وہ سیاست چھٹیوں پہ گئی ہے, لیکن اس کے باوجود سیاست جو ہے وہ سرگرم ہے, کیا وجہ ہے؟
2: وہ بس کنویں کی چلتی سے بولتے ہیں, اور اس میں تو ہمیشہ ہی ہم لوگ ہی اس کا بنتے ہیں نشانہ, مگر اس دفعہ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ستنتا وان کھیوس پہ بھی ہم لوگوں کو مطلب ان کو کافی مٹیریل مل گیا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ حزب التحریر کا ہمارا ایک جون سا ہے کہ کنوچیت, اس نے ایک ویڈیو بنا دیا, وہ لوگ بڑے چلا رہے ہیں کہ اس نے جی سب کو منع کیا ہوا ہے مسلمان بچوں وغیرہ کو کہ جی ستنتا کھیوس پہ نہیں جانا, انہوں نے تو ایک وہ چلا ہوا تھا. نمبر دو, اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا پٹاخے ماشاءاللہ چھوڑنا شروع کر دیے ہمارے بہت زیادہ لوگوں نے, اور کچھ کچھ جگہ کوئی حد سے زیادہ ہی چھوٹے ہیں, گاڑیاں مطلب گاڑیاں آگے لگی ہوئی ہیں, پیچھے لگی ہوئی ہیں. اب وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی سرخی بننے لگا ہے کہ جی کہ یہ فیور صحیح ایسے چھڑا رہے ہیں جس طرح میڈو صاف نے, اور یہ غلط ہے, اور ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے بھی چھڑا رہے ہیں. وہ ہر چیز وہی کہتے ہیں نا اوور ایگزیجریٹ ہو جاتی ہے.
1: تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ڈی ایف کو ضرور ہوتا ہے.
2: ڈی ایف کو آج کل آپ سے کل میلے پہ ملاقات ہوئی تھی, وہ تھوڑا سا ذکر چھڑا تھا نا, اب ڈی ایف اکیلی تو نہیں رہے گی. وہ پولیٹکس کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو آپ لوگ دیکھیں نا, انفوس خاص اولویل جون سا بنا, یہ جو ڈینس پاسپورٹ وغیرہ کا فیصلہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے, اب دیکھ لیں نیا پارلیمنٹ آیا اس میں پھر بھی دیکھ لیں کہ زیادہ اکثریت میں جو پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے بندے اپنے بھیجے ہیں وہ سارے وہ ہیں جو سختی کرنا چاہ رہے ہیں. ریڈیکیل کا ایک, مڑغاڑانے کا ایک, ایس ایف کے ایک دو, انہوسٹن کا ایک, پانچ بندے یہ ہیں, باقی سارے سشیل تمخل بینسا تینمکس تمخاڑانے, ٹی ایف کا وہ پھر فارم بن گیا ہوا ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر جان تنگ کرنے کے لیے ابھی بھی.
1: نہیں تو پارٹیوں میں تو جہاں کمیٹیوں میں اکثریت ہوتی ہے فیصلہ تو وہی ہوتا ہے.
2: اصل میں بھائی انسوئننگ اور ڈسپینسری وغیرہ ادھر ہی جاتے ہیں, وہ میں دراصل یہ ایک چیز ہے, میں خود اس کے میرے لیے بھی نیا تھا, مجھے تھا شاید کہ پارٹیز کو جگہ ملتی ہے کہ کتنے اپنی سائز کے مطابق سے, مگر یہ کوئی میرے خیال سے سلیکٹ کرتی ہیں پارٹیاں. اس میں میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا اس کا پتہ کر کے بتاؤں گا کہ اس میں کچھ پارٹیوں کے زیادہ کیوں ہیں اور کچھ کے تھوڑے کیوں ہیں, کیونکہ مجھے وہ دیکھ کے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی ہے کہ
1: شان آپ کی پارٹی ہے اقتدار میں, آپ کے فورمین ہیں, ان کو کافی بڑی اچھی پوسٹ ملی ہوئی ہے, تو وہ کافی جو ہے وہ یہ جو کیٹیگری فائیو والا معاملہ ہے اس میں بھی کافی پیش رفت ہو سکتی ہے, لیکن اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ غیر ملکی سے مراد ہم پاکستانی خود کس طرح ان سے رابطہ کرتے ہیں.
2: بالکل, یہ ایک چیز ایک دو دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی ڈسکس ہو چکی ہے, اور یہ انشاءاللہ ابھی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں, جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں, سوسائٹیاں ساری ان کے ساتھ مل بیٹھنے والی بات ہے, کیونکہ ایک جو لاسٹ ٹائم میرے خیال سے میں نے کہا تھا کچھ ہمارے موضوعات ہیں جو ایز اے ڈینش مسلم ان کو اس طرح ڈیل کرنا ہے, دوسرا یہ والا جو ان سے ڈینش, یہ ہمیں ڈینش پاکستانی کی طرح کرنا پڑے گا, کیونکہ ایک چیز میں نے پتا لگوائی ہے کہ پالیٹیشین بڑے بڑے آپ سے میٹنگ کر لیں گے, میٹنگ ساری کر لیتے ہیں, اگر میں کانٹیکٹ ہو میں کروا دوں گا, ہمارے سوشل ڈیموکریٹ کے اتنے جاننے والے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب اچھے میٹنگ ہو جائے گی, میٹنگ کر بھی لیں گے, مگر ان سے اگر کام نکلوانا ہے تو جس طرح نہیں پھر ان کے کام بھی آنا پڑتا ہے, تو کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ہمیں بنانی پڑے گی ماشاء اللہ, کوئی اس طرح سپورٹ کرنا ہے کسی کو, مطلب گیو اینڈ ٹیک چلتا ہی رہتا ہے جی پالیٹکس میں بھی, ادھر بھی کہیں بھی کوئی نہ کوئی گیو اینڈ ٹیک ہے.
1: لیکن جو ہمارے انٹیگریشن کے وزیر ہیں وہ تو ہمارے کلچر کو بھی سمجھتے ہیں, مکس بھی رہتے ہیں دوست, ان کی دوستی بھی ہے غیر ملکیوں کے ساتھ, آتے جاتے رہتے ہیں ان کی موافل میں, ان کو پتہ ہے ہمارے کلچر کا یا غیر ملکیوں کے کلچر کا, پھر بھی ان کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ کافی سخت آ رہے ہیں.
2: بس وہی کل بیٹھ کے وہی مذاق بھی تھوڑا سا ہو رہا تھا, سیریسنس تو ہے مذاق بھی ہو رہا تھا کہ مودن پلس کو ہم جتنے جانتے ہیں محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ سخت ہونے کی کوشش کر رہا ہے, مگر اگر آپ ویڈیوز نوٹ کریں اس طرح سے سخت لگ نہیں رہا, وہ جسے نہیں کہتے تکے نال, مگر وہ سوشل ڈیموکریٹ کی اس وقت پالیسی یہی ہے جی, اور جتنی دیر تک میٹے ہے اور یہ سوشل ڈیموکریٹ کا بھی رہے گا تو پولینگ پھل چیک میں کوئی نرمی اس طرح آنے نہیں لگی, تو مگر یہ ہے کہ موت بھی اس کو اسے یہ پاکستانیوں کے معاملے میں اسپیشلی ہمیں واقع میں کرنا چاہیے, مگر ایز اے پاکستانی کمیونٹی کر کے میٹنگز کر کے انہیں پتہ کرنا چاہیے کہ کیا چاہیے یار ان کو, مسئلہ اس چیز کا ایگزیکٹلی کیا ہے, ایک ایک صحیح مدعا اپنا لے کے جائیں, تو وہ میں بھی انشاءاللہ پتا کروں گا، مگر یہ ہے کہ ہمیں اپنی فل تیاری سے جانا چاہیے، صرف اس سے ہی نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں.
1: آج آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی ماسٹر صاحب سے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ میری کوئی ریلیٹیو ہے، ان کے بچے ماشاء اللہ غالباً 40-45 سال انہوں نے عمر بتائی، انہوں نے کہا سسٹم تو ان کو ویزا دے رہا ہے لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن ان کے بچے جو ہیں کافی پڑھے لکھے پڑھ گئے، ان کو ویزا ملتا رہا، لیکن اب انہیں مجبوراً کام کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے ڈیفینیٹ ان کے میاں اچھی خاصی پوسٹ پہ ہے، انہوں نے ان کو کام نہیں کروایا کہ آپ بچوں کو زیادہ لک آفٹر کریں، ان کے بچے سارے پڑھ گئے ہیں لک آفٹر ماں نے کی ہے، لیکن چونکہ قانون قاعدہ ہے ایسا کہ جب تک وہ شرائط پوری نہیں کریں گے آپ کو ویزا نہیں ملے گا پکا.
2: بس یہ آ گیا نا، وہ میری ایک دفعہ فلاسفے سے دیر بات ہوئی تھی، کہتا ہے یہ بند فورم میں تو وہ بھی مانتا تھا، اور یہ تو اگر کچھ جتنے اچھے پولیٹیشین بند فورم میں مان جاتے ہیں کہ لا جو انہوں نے بنایا ہے اگر وہ 2% کو اٹیک کرنے کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر وہ پھر بھی باقی 99% اس میں رگڑا جاتا ہے. کوئی بھی لا ایک کو بنانے کے چکروں میں یہ اچھے بندے مارے جاتے ہیں ہمیشہ.
1: لیکن پھر یہ جمہوریت تو نہ ہوئی نا، ڈکٹیٹرشپ ہوئی.
2: بس یہی ہے جی، اسی لیے تو میں بھی اس چیز کا بڑا خلاف ہوں کہ جو ون سائز فٹس آل، اس کے حق میں میں کبھی بھی نہیں رہا ہوں. ہر چیز کا مطلب ہر کیس کا ایک اپنا اپنا مدعا پہلو ہوتا ہے. یہ کہ ایک سسٹم کے تحت ہے کہ جو ون سائز فٹس آل جو تھیوری ہے یہ مجھے کبھی پسند نہیں ہے. اور یہ تھا یہی مڑوار ہے کہ پارٹی کا کافی چیزوں میں ایسے ہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ فلیکسیبلٹی ہو، مطلب اتنا یک ہیں تو نہ ہو چیزیں جو سا ہے، تو انشاءاللہ.
1: لیکن ہم پھر آتے ہیں پارکنگ کی طرف بھی آتے ہیں، پارکنگ کے مسائل ان دنوں میں آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں. کل میلے پہ بھی آپ نے پارکنگ کا سسٹم دیکھا کہ گاڑیاں جو اتنی زیادہ تعداد میں، سب گاڑیاں تقریباً جو ہے اب تو الیکٹرک گاڑی آپ کو نظر آتی ہے، پٹرول والی ڈیزل والی تو بہت کم نظر آتی ہیں، گاڑیاں زیادہ تر الیکٹرک ہیں، لیکن پارکنگ کا پھر بھی مسئلے مسائل بنتے رہتے ہیں. لیکن شہر میں سائیکل کے لیے کوئی اتنی بڑی جگہ بنائی جاتی ہے، سائیکلوں کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، سائیکلوں کی وجہ سے دائیں بائیں مڑنے میں بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، ان کے علیحدہ بین بھی بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے سائیکلوں کے لیے ہر قسم کی جو ہے اجازت ہے. پرائیویٹ کمپنیاں بھی سائیکلیں لانچ کر رہی ہیں، الیکٹرک سائیکلیں لانچ کر رہی ہیں. تو کیا جب گاڑیوں کو اجازت ہے پھر سائیکلوں کو اجازت ہے، تو گاڑیوں کا پرابلم ہے، پارکنگ کا پرابلم ہے، یا سائیکلوں کا پرابلم ہے؟
2: یہ تو انفراسٹرکچر ہی پتہ نہیں کون بیٹھ کے بنا رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ادھر بیوروکریسی کا بڑا کوئی سسٹم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو سڑکوں پہ کام کرنا شروع کیا ہوا وہ لوگ پٹ رہے ہیں کہ یار اس پلاننگ کے تحت تم لوگ کام شروع کرتے ہو. ایئرپورٹ سے آنے جانے کا مطلب جو ان سا انہوں نے بیڑا ورک کر دیا. اور میرا ایک بڑا اچھا دوست ہی بولے بن گیا ہے مڑوار میں، ایک اوپن ہینگن میں ہی ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ پالیٹکس چھوڑ گیا تھا یہ سال ڈیڑھ پہلے کا، مطلب کہ کمنیل ویل سے تھوڑا سا پہلے کا تیار نہیں کرنا. اور وہ بیسیکلی ڈینش ہی ہے، وہ خود یہ پیکو پیکو چکنک اور اس میں اس کی پڑھائی ہے، وہ ہی کام کرتا ہے. کہتا ذیشان یار مسئلہ ہماری پالیٹکس کا یہ بھی ہو گیا کہ جو اب میں ایکسپرٹ ہوں نا اپنی فیلڈ کا، کہتا کوئی سنتا ہی نہیں، اپنی مارے جا رہے ہیں. کہتا میرا کوئی نہیں دل یہ کرنے، میرا کوئی نہیں دل. مگر پھر یہ ہے کہ اسے واپس لے آئے کیونکہ بڑا محنتی بندہ ہے اور بڑا قابل بندہ ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو مڑوار کی پارٹی ہے اس میں کافی ایسے بندے آئے ہیں جو فاؤلی ہلز اپنی کی وجہ سے آئے ہیں، مگر اب میں وہ میرے فرسٹ کا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ 11 سال فارمر رہ چکی ہے، 7 سال سے اب وہ پرائم منسٹر ہے مطلب ڈنمارک کی، وہ 24 سال کی عمر سے آئی ہوئی ہے فولک سنگھ میں. نہ اس نے آج تک کوئی کام کیا، نہ اس کی اس طرح سے کوئی ہے، مگر یہ کہ پالیٹکس میں وہ شیر نہیں بنی ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. مجھے جو سب سے بڑا لگتا ہے ایز اے ٹیچر بھی، اور کہ آج کل پالیٹیشین سارے پالیٹکس پڑھ کے بن جاتے ہیں ینگ سے، مطلب وہی انگتوں سچیے سے چلے اور کیریئر بن گیا نا پالیٹکس، اس میں یہ ایکسپیرینس نام کی چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، جو سب سے بڑا میرے ایک لڑائی رہی.
1: اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اب سارے جو ہے پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سسٹم میں جا کر آپ کو پاور ملتی ہے.
2: بس یہ اور یہ سمجھ آ گیا ان کو. آپ دیکھ لیں، میں ابھی پچھلے دنوں سروے پر دیکھ رہا تھا، میری کوئی وہ ینگ بچے تھے ان کا کوئی پروجیکٹ تھا، انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا کہ ینگسٹرز کو کیسے انوالو کرنا چاہیے پالیٹکس میں. اور میں پھر کوئی سروے دیکھے تو پہلی بات تو رائے صاحب یہ میرے خیال سے کوئی ڈنمارک کی ٹوٹل آبادی میں سے 2-3% تو صرف ان پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ ہے صرف، और उनमें से बिल्कुल कोई 1% नीचे पहुंच जाते हैं जब आप बोलते हैं कि यूथ इनका हिस्सा है। और हमारे फिर अगर आप कर लें जो गैर मुल्की बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो तकरीबन है ही नहीं कहीं, और वो जो दूसरे हैं वो बस बनते बनते चलते जाते हैं और फिर पावर पावर ऐसे आ जाती है। और इसीलिए तो बेड़ा गर्क हो रहा है मुल्क का, काफी काफी जगह के स्कूल बंद है और क्योंकि सारे बैठे हुए हैं मगर इनको पता है कोई नहीं कि काम किया गया है नहीं कभी, तो अंदर अंदर बैठ के सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं सारे।
1: तो इस चीज को आप चूंकि स्टूडेंट से मिलते रहते हैं, अगर देखा जाए तो फिलहाल जब हम पढ़े लिखों की बात करते हैं आपका नाम आ जाता है, कासम नज़ीर का नाम आ जाता है, काशिफ का नाम आ जाता है, जुहैर का नाम आ जाता है, इसी तरह और भी जो अपना अरफान का नाम आ जाता है, जब आप लोग क्योंकि तनवीर तो सियासत छोड़ ही गया, नदीम फारूक का नाम आ जाता है, जब आपस में आप लोग बैठते हैं तो आप लोग किस तरह की बातें करते हैं?
2: मेरा तो अब माशाल्लाह सबसे अच्छी बड़ी गपशप है और ये है कि खुल के बात करते हैं एक दूसरे के साथ कि यार क्या करें क्या ना करें, पॉलिटिक्स को अंदर से समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो हम सबको ये इस चीज पे तो अग्री है कि बड़ा ही स्लो प्रोसेस है अंदर जाके भी कि बंदा बोले कि अंदर अभी पहुंचा ही और मैं बस चेंजेस लाने लगा हूं, वो बड़ा औखा काम है, बड़ा स्लो, बड़ा ब्यूरोक्रेटिकल अपना मतलब ये हम काफी बात करते हैं कि चेंजेस आती हैं मगर बड़ी स्लो, तो बड़ा सबर वाला काम है वैसे ये
1: सफर वाला काम है। मैं वैसे बात करूं कहीं आप भी तो नहीं वो सारे आपस में बैठ के करते यार अब क्या करें, हमें वोट देने वाले भी अजीब अजीब डिमांड हमसे करते हैं।
2: नहीं ये है कि असल में मैं हम लोग जो इस दफा लड़े हैं उससे पहले तो अभी पता नहीं मगर स्पेशल जो फॉल्क सिंह वाला लड़े हमारा अभी तक तो यही है जी कि एक ये स्ट्रेटजी है कि अगली दफा क्या करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं एज अ पाकिस्तानी बैकग्राउंड हम सारे इधर रहते हैं, हमारी अक्सरियत सारी इधर है, कैंडिडेट सारे एक ही ओमान में खड़े हो जाते हैं, दो ओमान में खड़े हो जाते हैं, हमें जाहिर अपनी प्रोफाइलिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी, आगे तक भी पहुंचना पड़ेगा कोशिश करके। अब ये जो फीन या कोई यूलर्ड के इलाके इनमें भी देखना पड़ेगा कि किस तरह कोई इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या शेलन, अब आप ऐसे ही देख लें कि शेलन में एक शेलन फ्रेस भी होता है, उसमें भी हमारा कोई बंदा नहीं खड़ा होता, हम लोग कोपनहेगन और कोपनहेगन के ओमान में बस रह जाते हैं। तो ये एक गुफ्तगू सब भाइयों से चलती रहती है कि हम कुछ स्ट्रेटेजिकली इधर कर सकते हैं इससे फायदा हो कि सारे मतलब इधर ओमान में आके खड़े हो जाए आपस में एक दूसरे के साथ कर कुर के लो जी ठप्पो ते कार चलो, उस चीज से बचने के लिए ये एक स्ट्रेटजी सोचने वाली है। तो उसके बाद जाहिर है वो तो आप भी पता है उस पर अब क्या रोना और कि ये कि कौम निकली नहीं फिर भी और आगे निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इस दफा भी नहीं निकले जब
1: इस दफा एक चीज बड़ी फेलियर है कि शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि 40,000 हम लोग हैं, हम अपना एक पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बना सके
2: जी, और बस ये है कि मगर इसमें अब शर्मिंदगी है, वही मैं कह रहा हूँ इसमें बातचीत खत्म कर देनी चाहिए हमें, अब इसमें अब बैठ के कोई ढूंढना चाहिए स्ट्रेटेजी ढूंढनी चाहिए कि कैसे होगा, और मिल बैठ के होगा मशावरत है एक पॉलिटिक्स में, मैं मानता हूँ कंपटीशन भी होता है मगर कुछ देर तक साथ भी चलना पड़ता है, जिस तरह आप देख लें हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा होता है, अब हम जब किसी भी पार्टी से लड़ते हैं एज अ टीम लड़ रहे होते हैं मगर लड़ तो एक सीट के लिए रहे होते हैं, इन दी एंड पर्सनल जो उनसे वोट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा, किसी को 800 वोट मिले किसी को 802 मिल गए वो सीट ले गया, मगर उससे पहले आपको एज अ टीम भी रेडी होना पड़ता है और लड़ना पड़ता है, और हमें भी ये याद रखना पड़ेगा कि इन द एंड यस दौड़ अपनी अपनी मगर जब तक मिल के स्टार्ट नहीं करेंगे फिर वो बिल्कुल ही रह जाएंगे सारे, तो इंशाल्लाह मिलकर स्टार्ट लेंगे इस दफा और फिर आगे जो हिम्मत ज्यादा मारेगा इंशाल्लाह जो मतलब ज्यादा बंदों को अट्रैक्ट कर सकेगा वो इंशाल्लाह अंदर जाके बैठे हमारी नुमाइंदगी करें।
1: जीशान आखिर में ये जो हमें आजकल मैंगो का फेस्टिवल का जो जोश चढ़ा हुआ है, पांच पांच छः छः प्रोग्राम कराने के लिए हम मेहनतें करते हैं जाते हैं लोगों को बुलाते हैं स्टार लगाते हैं, तो क्या ये भी कोई एक ये क्या ट्रेडिशन बन जाएगा या इसमें भी कोई चीज़ इन्वॉल्व है?
2: पता नहीं जी मगर इस साल तो मुझे तो बड़ी खुशी है, मैं तो वही देख रहा था कल अब बॉन्पी में हुआ है, अगले हफ्ते एल्बस लोन में हो रहा है, फिर एक और होएगा और फिर 19 तारीख को इधर हमारे बैला रुख तक ले आया माशाल्लाह इधर भी आ जाएंगे, तो ये हमारी कल भी मुलाकात हुई थी उधर, तो निकल रहे हैं, बच्चों को भी जरा शऊर आया दोबारा कि हमारे यार इधर प्रोग्राम होते हैं बहुत अच्छा हो रहा है। मगर कल मैं वही आया था जब मेले से, मैं कह यार इधर भी हमें चाहिए कि लोग आए, यार पॉलिटिकल करना नहीं है मगर किसी तरह कोई, क्योंकि अब हम लोग काफी लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिनसे होती है, यंगस्टर से भी हुई थोड़ी बहुत जिन्होंने जाना, ओ आप शान है, हाँ जी शान है, इधर आके हमारे लिए भी बड़ा अच्छा होता है आके गुफ्तगू करना, बात करना। इस साल असल में फॉल्कन चेंज वेल हो चुका है तो इसलिए लोगों का थोड़ा थोड़ा अभी शऊर है, अगले साल जब होगा शायद नहीं होगा, मगर इसको किस तरह बनाई रखना है हमने, तो वो मैं अब सोच रहा था कल गारा आके कि किस तरह इनको हम थोड़ा सा ऐसे सोसाइटी को भी स्ट्रॉन्ग करने में, कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में भी इन मेलों को यूज कर सकते हैं। तो माशाल्लाह तीन तीन चार चार तो हो रहे हैं, और जैसे आप देख रहे हैं हमारी कोई तंजीम पॉलिटिकल होना नहीं चाहती, हमारी कोई तंजीम मतलब उस तरह ऑर्गेनाइज होना नहीं चाहती, मगर ये है कि बेहतरी चाहते हैं हमारे लिए, तो कुछ स्कीम लगा ही रहा था कि किस तरह बातचीत हो सकती है, इतने बंदे आते हैं, स्टेज भी लगा होता है कि कुछ हम उसमें
1: उसमें जो है पॉलिटिशियन को चाहिए कि वो तकारीर भी करें, लोग उनसे सवालात भी करें, अच्छे माहौल में सारी बात होनी चाहिए ना, खाली हम लोग खाने के मूड में चले जाते हैं, मेरी जरूरत है मैंने खाना खाना है, बच्चों की जरूरत है उन्होंने आइसक्रीम खानी है या फ्रांचीज लेनी जी, है जी, उसके अलावा भी इंटरेस्ट होना चाहिए ना।
2: बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल इसको ये सोच रहा था जिस तरह चले कौन लॉस तो होता है वो तो बड़ा होता है, मगर इधर डेनमार्क भी आप देखें फर्स्ट में ही आता है, उधर ऐसे मेले ही कर लेना, एक तरह के मेले लगते हैं, स्पीचेस होती हैं थोड़ी बहुत बीच में, थोड़ा शोहर मेला होता है, इसी तरह आप संथेंस ये 23 तारीख को जो इनका जलाने का है उसमें भी पोल छेला होती है, आते हैं पोल छेला करने जाते हैं, माशाल्लाह मैं भाई नदीम का पढ़ रहा था कि भाई नदीम कहीं गए हुए थे तो टॉस्ट्रोप अपने पोल छेल करने के लिए, तो मतलब फेस्टिवल्स का हिस्सा भी हो सकता है ये सोसाइटी में इन्वॉल्व करना। माशाल्लाह कल एक बच्ची मिली मुझे अपनी कि नई शिफ्ट शुरू कर रही है, कहती भाई मुझे बड़ा शौक है पॉलिटिक्स का, मैं कहा जी आप लोगों की जरूरत भी है, मैंने कहा आपका सैंपल साइंस पढ़ोगी, कहती है बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं कहा ठीक है, मैं किसी मदद की जरूरत हुई कभी, मैं कहा मुझे फाइन कर लेना, तो मुझे निकलने का बड़ा फायदा होता है। और जबकि मैं वही मजाक कर रहा था, मैं कल इस नीयत से मेले पे गया था, मैंने गाड़ी चेंज करनी थी तो 3-4 घंटे वैसे ही लग गए उधर, शुगर शुगर लोगों के साथ लगाते हैं, चाय पीते हैं, कुर्सी खाते हैं, तो बड़े अच्छे वैसे हो रहे हैं ये फेस्टिवल, तो इनमें ये है कि किसी तरह हम अपनी आइडेंटिटी स्ट्रांग करें, अपना कोई मुद्दा जरा स्ट्रांग करें, तो फिर इंशाल्लाह, क्योंकि बड़ी मेहनत देखे ना जिन्होंने कल किया है, मैं उनको भी देख रहा था, बड़ी मेहनत लगती है ऐसे फेस्टिवल करने में, छोटा करें बड़ा करें जिधर भी करें, बड़े बंदों की मैन पावर लगती है, तो मैं वही कह रहा हूँ हमारे इतने लोग हैं जो एक हम कम्युनिटी के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह शुगर मेला भी और साथ सीरियसनेस दोनों साथ साथ लेके चलेंगे।
1: सीरियसनेस जो है वो लाजमी होनी चाहिए, बहरहाल जिन जो मेहनत करते हैं डेफिनेट हो, मेहनत करते हैं तो कुछ कमाते भी हैं, अगर मेहनत नहीं करेंगे कमाएंगे भी कुछ नहीं।
2: बिल्कुल, और ये है कि बस इंशाल्लाह थोड़ा मिलकर अगर स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश है अभी इन मेलों में खुद भी
1: आऊंगा। मेलों में पार्टियों को आना चाहिए जी, सियासी पार्टियों को आना चाहिए, उन्हें अपने स्टाल लगाने चाहिए और कुछ फंक्शन में जो पार्टिसिपेट भी करना चाहिए।
2: जी जी, क्योंकि ये तो देखिए अभी बेला उप में खामा मार्केट होगी, वो भी इस साल हम मुर्गार ने बैठे हुए थे, अच्छा जी इस साल हमने स्टॉल लगाना है कि नहीं लगाना, बेला उप में सोशल डेमोक्रेट हर साल लगाता है, तो ये है कि मतलब और हम सारे अगर एक जगह भी आके खड़े हो जाए उधर, बस लोगों का एक बना रहेगा ना कि यार अच्छा यार सारे आए हुए हैं इकट्ठे मिलके खड़े हैं, चलो गुफ्तगू होगी, इंटरेस्ट होगा, तो ये एक आइडिया मेरे जहन में कल आया था, अब आपके रेडियो के जरिए थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इंशाल्लाह जो हमारे ऑर्गेनाइज करने वाले उनसे भी इंशाल्लाह कांटेक्ट करेंगे।
1: और मसला ये है कि अब सब डेनिस सियासत करना चाहते हैं, लेकिन वो जो हमारे अपने अपने जो सियासी जो हमारी पार्टियां बनी होती हैं, हमारे रूट्स बने होते हैं जिसे हम जमहूरियत का नाम देते हैं, तो ज़्यादा फोकस हम उस तरफ करते हैं, ज़्यादा इधर नहीं फोकस करते कि हम वोट क्यों नहीं देते, पार्टियों में मेंबर डैनिश पार्टियों के मेंबर क्यों नहीं बनते, या इन पार्टियों में जाते क्यों नहीं है, इस तरफ हम तवज्जो नहीं देते, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं जी हार गए हम, इतने ज़्यादा बंदे थे, हम पार्टिसिपेट उस तरह का करते नहीं है, तो गिले बनते ही बनते हैं, कभी मीडिया से बनते हैं, कभी सियासतदानों से बनते हैं, कभी कम्यून की तरफ हम चल पड़ते हैं, कभी पार्लियामेंट की तरफ चल पड़ते हैं, और गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते कम कर क्या रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने कि जाहिर है करना खुद से शुरू चाहिए, गिला भी आप करें मगर यह है कि घर बैठ के नहीं, बाहर निकल के काम करके साथ साथ गिला करें, मेरी असल में हमेशा ये सोच रही है गिला अगर करना यार तो मतलब इस पे नहीं करना कि यार सुनी सुनाई बातों पे घर बैठे बैठे गिले करने, बाहर निकल के देखो जहाँ फिर नहीं आपको ठीक लगता कुछ, फिर गिला आप कैसे भी हो यार, ये मैंने एक्सपीरियंस किया।
1: मगर मैं कल बात कर रहा था, मैंने कहा ये जो ट्रैफिक मिनिस्टर है उन्हें खुद गाड़ी चलानी चाहिए, हर रोज जो है ना हफ्ते में 7 दिन एक बार चला के देखें लगातार, ताकि इनको पता चले ट्रैफिक के मसाइल क्या हैं।
2: बिल्कुल, मेरा तो दिल करता है हफ्ते में एक एक

0: क्योंकि इस मतलब ऐसी ऑप्के हमें उठानी चाहिए मिलकर, यार मेरा लोकल स्कूल है वो इस लिस्ट पे है, उसको इससे
1: लिस्ट पे
0: निकालेंगे
1: यार
0: नहीं।
1: जाना चाहिए, जो स्कूल है वो मिसता होता है या होती है उन्हें भी जाने, क्लासों में बैठना चाहिए, आगे पीछे देखना चाहिए। ये खाली बैठ के मीटिंग कर ली, ग्रुप मीटिंग होगी उसमें अक्सरियत ने वोट दे दी, जो बिल पास कर लिया।
0: जी, और बड़ा बड़ा होता है जी इधर कमून के लेवल पे, तो अब मेरा थोड़ा कांटेक्ट भी है, हाथ भी डलता है, क्योंकि अभी बाहर बाहर से काफी करता रहता हूँ कि मतलब ये कुछ का कार है।
1: बहरहाल आप मीठी मीठी जुबान में बड़ी बातें कह जाते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। छुट्टी वाले दिन आपने टाइम
0: आपका
1: निकाला, आपका बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया राजा साहब, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है सब पे मेलों
1: इंशाल्लाह।
0: पे। ठीक है जी, इंशाल्लाह, ओके।
1: सामान नाजरीन, ये थे जीशान जिनकी आप बात सुन रहे थे। वो बड़ी खुल के बात करते हैं, अच्छे मूड में बात करते हैं और दोस्ती की शक्ल में बात करते हैं। वो चाहते हैं तब्दीलियाँ हों, वो चाहते हैं कि हर चीज़ में तब्दीली हो, लेकिन उसका तरीक़ाकार भी होता है। तो हमें चाहिए कम जो है ना वो ज़्यादा डैनिश पार्टियों में जाएं, कम्यून में जाएं, पार्लियामेंट्री की तरफ तवज्जो दें, कम्यून की तरफ तवज्जो दें, और बाकी जो सियासत है वो बेशक करते रहें, लेकिन जो आपकी सियासत है जहाँ आपके बच्चों का मुस्तकबिल है उस तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। समय नाज़रीन हमारे साथ साथ रहिएगा।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो दारा आपके आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा था, आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हम उस्ताद कहते होते हैं, गो के बहुत छोटे हैं हमारी उम्र से, लेकिन वो चूंकि स्कूल टीचर हैं तो इसलिए उनको उस्ताद कहा जाता है। इत्तेदाल पसंद पार्टी के वो अच्छे खासे सरगर्म रुकन हैं, हुज़्ब सुरसा के मेंबर भी हैं, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ा और आगे की भी तैयारियां, आइंदा आने वाले जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे उसकी भी तैयारियां भी से उन्होंने शुरू कर दी। उनको एडवांटेज है चूंकि वो लोगों से मिलते रहते हैं और नौजवानों से उनका जो है अट्रैक्शन रहता है, बातचीत भी उनकी चलती रहती है। तो ज़ीशान, एक बार फिर आपको अदर आपकी आवाज पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत थैंक यू आपका इंट्रोडक्शन का भी। आजकल उस्तादी भी अल्लाह का शुक्र है अब गई हुई है, जरा छुटियों पे नई क्लासों की तैयारी हो रही है।
1: टीचर तो फिर उस्ताद ही होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, टीचर टीचर उस्ताद ही कहलाया जाता है उनको।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब ने, ये वाकई ये इसमें कोई शक, इस दफा वैसे भी मेरी क्लास थी, ग्रेजुएट भी हुई, उसका भी मतलब हमेशा ही जब कोई नई क्लास अपनी ग्रेजुएट होती है हर साल वो बड़ा अफेक्ट करती है। तो मैं अभी काफी अपने बच्चे दोबारा आगे भेजे, अल्लाह उनको कामयाब करे।
1: आमीन। ज़ीशान, हमने देखा कि हर वक्त गाड़ियों की आवाज़ें आती रहती हैं, चूंकि मैं ऊपर रहता हूँ, काफ़ी ऊंचा रहता हूँ तो देखता रहता हूँ, तो गाड़ियाँ हर वक्त आती जाती रहती हैं, हॉर्न बजते रहते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये एक ट्रेडिशन बना हुआ है, 3-4 दिन या 5 दिन चलता रहेगा छुट्टियों के दौरान, तो इसकी कहानी क्या है असल?
2: इसकी कहानी असल में पहले भी वही होता था, पुराने दिनों में भी जो बन जाते थे फाउल एज या स्टूडेंट होते थे, मतलब शहर में घूमना, उनको जिस तरह सराहना और वही

0: यूनिवर्सिटीज में पढ़ने की। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे हमारे सब बच्चे आगे जाके आगे अगर आगे भी कोर्स करें जो उनसे मर्जी करें, तो फाइनल एजुकेशन करें अपने। तो ये है जी
1: लेकिन
0: इसकी
1: बड़ा
0: ट्रेडिशन।
1: मज़ा आता है, मैंने देखा है कि टूरिस्ट आए होते हैं तो बड़े शौक से जो है वो तस्वीर बना रहे होते हैं, तो आगे से जो स्टूडेंट होते हैं वो भी बड़े आगे से बड़े बड़े फनी फिक्रे कसते हैं।
0: वो ऐसे ही है जी। और फिर पता है आपको हर चीज करते करते जिधर भी करो थोड़ी सी ओवर एग्जेजरेट हो जाती है। अब अगर आप थोड़ा सा अगर देखें डेनिस सोसाइटी के हवाले से, तो ये पीना इनका ज्यादा हो जाता है, उस पर भी मतलब बड़ा फोकस रखा गया हुआ है कि थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि गाड़ियों में चल रहे होते हैं और इतना अल्कोहल जो उनसे आप
1: नहीं,
0: कुछ
1: लाजमन
0: कुछ
1: ये
0: जगह
1: पीना
0: तो
1: जो है इसे बैन होना चाहिए, आपकी क्या राय है?
0: बैन करना जी मुश्किल है इस मुल्क में, मगर कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो तो हम हमेशा से बात करते हैं, मतलब दैट्स अ बिग इशू जो हमेशा चलता रहता है कि अल्कोहलिज्म मतलब जितने घरों में और जितनी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उतनी और शायद कोई स्टॉफा करते हो, मगर क्या करें, इनके कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा है कि खत्म करने में वोट डाल रहे हैं सब। तो ये
1: बाद
0: कि
1: में
0: कंट्रोल
1: बच्चों को
0: कर सकते हैं,
1: आखिर में
0: खत्म नहीं
1: शाम
0: कर
1: तक बच्चों
0: सकेंगे
1: को होश ही नहीं रहता।
0: बिल्कुल, मगर ये मैं देख रहा था इस दफा, मैंने कुछ आम वाली भी देखी है कि काफी बेहतर भी आए हुए हैं, कि कुछ चीजें बच्चे कंट्रोल करना सीख ही गए हैं, कि उन्हें भी पता है कि इतना भी खराब ना कर दो कि दिन याद ही ना रहे आपको, इतना आपका अच्छा दिन है कि उसमें आपको कुछ याद ही ना रहे। तो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना, अवेयर होते जा रहे हैं बच्चे इसमें। मगर ये बहरहाल आप दूसरी तरफ से ये भी देख सकते हैं कि हमारे लोग अब हम लोग एक दफा फिर बनने लगे हैं सुर्खियां
1: वाह, मैं उस तरफ आता हूँ, ये
0: न्यूज
1: सुर्खियाँ
0: में।
1: हम लोग बनने लगे हैं। अब देखें कि इलेक्शन तो हो गए, कम्युनिस्ट के भी हो गए, पार्लियामेंट के भी हो गए, सब कुछ मिल गया, हुकूमत भी बन गई, जो है वो कमेटियाँ भी मिल गई, अब जो है वो सियासत छुट्टियों पे गई है, लेकिन उसके बावजूद सियासत जो है वो सरगर्म है, क्या वजह है?
0: वो बस कुएं की सीढ़ी जिसे बोलते हैं, और उसमें तो हमेशा ही हम लोग ही उसका बनते हैं निशाना। मगर इस दफा तो मैं ये देख रहा हूँ कि सुतिंता वॉन ख्योस्ट पे भी हम लोगों को मतलब इनको काफी मटेरियल मिल गया है। आपने देखा होगा वो हिजबुल तहरीर का हमारा एक जो सा है कि कलमचीत, उसने एक वीडियो बना लिया, वो लोग बड़े चला रहे हैं कि उसने जी सबको मना किया हुआ है मुसलमान बच्चों वगैरह को कि जी सुतिंदर खड़े पे नहीं जाना, उन्होंने तो एक वो चला हुआ था। नंबर दो, अब ये आपने देखा होगा पटाखे माशाल्लाह छोड़ना शुरू कर दिए हमारे बहुत ज्यादा लोगों ने, और कुछ कुछ जगह कोई हद से ज्यादा ही छुटे हैं, गाड़ियां मतलब गाड़ियां आगे लगी हुई हैं पीछे लगी हुई हैं। अब वो मैं देख रहा हूँ वो भी सुर्खी बनने लगा है कि जी कि ये फ्यूल सही ऐसे छुड़ा रहे हैं जिस तरह न्यूरो साफ्ट ने, और ये गलत है, और एक दूसरे के पीछे पीछे भी छुड़ा रहे हैं। और हर चीज वही कहते हैं ना, ओवर एग्जेजरेट हो ही जाती है।
1: तो भी इसका फायदा जो है वो DF को जरूर होता है।
0: DF को आजकल आपसे कल मेले पे मुलाकात हुई थी, वो थोड़ा सा जिक्र छिड़ा था ना, अब DF अकेली तो नहीं रहेगी। वो पॉलिटिक्स के हवाले से भी अगर बात करें तो आप लोग देखे ना इन्फोस खास उलवेल जोन सा बना, ये जो डेनिस पासपोर्ट वगैरह का फैसला वगैरह करना होता है, अब देख लें नया पार्लियामेंट आया उसमें फिर भी देख लें कि ज्यादा अक्सरियत में जो पार्टियां बैठी हुई हैं जिन्होंने बंदे अपने भेजे हैं वो सारे वो हैं जो सख्ती करना चाह रहे हैं, रेडिकेल का एक, मुड़गाड़ आने का एक, SF के एक दो, इनहोसिस्ट का एक, पांच बंदे ये हैं, बाकी सारे सुशेल ते मुखचल बेंसा तेनमक्स ते मुखाड़ा ने TF का वो फिर फॉर्मेट बन गया हुआ है, ये बैठे हुए हैं उधर जान तंग करने के लिए अभी भी। तो
1: नहीं तो पार्टियों में, तो जहाँ कमेटियों में अक्सरियत होती है, फैसला तो वही होता है।
0: असल में भाई ये एनसो इनिंग और डिस्पेंसरी वगैरह उधर ही जाते हैं। तो वो मैं दरअसल ये एक चीज है, मैं खुद इसके मेरे लिए भी नया था, मुझे था शायद कि पार्टीज को जगह मिलती है कि कितने अपनी साइज के मुताबिक से, मगर ये कोई मेरे ख्याल से सिलेक्ट करती हैं पार्टियां। इसमें मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा इसका पता करके बताऊंगा कि इसमें कुछ पार्टियों के ज्यादा क्यों है और कुछ के थोड़े क्यों है, क्योंकि मुझे वो देख के थोड़ी सी हैरानगी हुई है कि कुछ पार्टियों के
1: निशान,
0: एक एक हैं
1: आपकी
0: कुछ के दो
1: पार्टी
0: दो।
1: है इक्तदार में, आपके फोरमैन हैं, उनको काफ़ी बड़ी अच्छी पोस्ट मिली हुई है, तो वो काफ़ी जो है वो ये जो कैटेगरी 5 वाला वाला मामला है, इसमें भी काफ़ी पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि गैर मुल्की से मुराद हम पाकिस्तानी खुद किस तरह उनसे रबता करते हैं।
0: बिल्कुल, ये एक चीज अब एक दो दफा आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस हो चुकी है, और ये इंशाल्लाह अब ये छुट्टियां खत्म होती हैं।

0: हमारे बड़े बुजुर्ग है, सोसाइटी है सारी, इनके साथ मिल बैठने वाली बात है। क्योंकि एक जो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मैंने कहा था, कुछ हमारे मौजूदात हैं जो एज अ डेनिश मुस्लिम उनको उस तरह डील करना है। दूसरा ये वाला जोन सा है डेनिश, ये हमें डेनिश पाकिस्तानी की तरह करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज मैंने पता लगवाई है कि पॉलिटिशियन बड़े बड़े आपसे मीटिंग कर लेंगे, मीटिंग सारे ही कर लेते हैं, अगर मेरे कॉन्टेक्ट हो मैं करवा दूंगा। में हमारे सोशल डेमोक्रेट के इतने जानने वाले हैं जो बैठे हुए हैं, मतलब अच्छे मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग कर भी लेंगे, मगर अगर उनसे अगर काम निकलवाना है तो जिस तरह नहीं फिर उनके काम भी आना पड़ता है, तो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी हमें बनानी पड़ेगी। माशाल्लाह कोई इस तरह सपोर्ट करना है किसी को, मतलब गिव एंड टेक चलता ही रहता है जी पॉलिटिक्स में भी, इधर भी कहीं भी कोई ना कोई गिव एंड टेक है,
1: यार,
0: और
1: लेकिन
0: वो
1: जो
0: हमें
1: हमारे इंटीग्रेशन के वजीर हैं वो तो हमारे कल्चर को भी समझते हैं, मिक्स भी रहते हैं दोस्तों, उनकी दोस्ती भी है गैर मुल्कियों के साथ, आते जाते रहते हैं उनकी मुवाफल में, उनको पता है हमारे कल्चर का या गैर मुल्कियों के कल्चर का, फिर भी उनके जो
0: एग्जैक्टली
1: बयानात आ रहे हैं वो काफी सख्त आ रहे हैं।
0: बस वही कल बैठ के वही मजाक भी थोड़ा सा हो रहा था, सीरियसनेस तो है, मजाक भी हो रहा था कि मौत को हम जितने जानते हैं महफिल में बैठे हुए थे, कि वो सख्त होने की कोशिश कर रहा है, मगर अगर आप वीडियोस नोट करें उस तरह से सख्त लग नहीं रहा, वो कहते धक्के नाल, मगर वो सोशल डेमोक्रेट की इस वक्त पॉलिसी यही है जी। और जितनी देर तक मेटे है और ये सोशल डेमोक्रेट का भी रहेगा, तो फुलेनिंग फुल चीक में कोई नरमी उस तरह आने नहीं लगी। तो मगर ये है कि मौत उसको सही है पाकिस्तानियों के मामले में स्पेशली, हमें वाकई में करना चाहिए, मगर एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी करके मीटिंग्स करके उन्हें पता करना चाहिए कि क्या चाहिए यार इनको, ये मसला इस चीज का एग्जैक्टली क्या है, एक एक सही मुद्दा अपना लेके जाए। तो वो मैं भी इंशाल्लाह पता करूंगा, मगर यह है कि हमें अपनी फुल तैयारी से जाना चाहिए, सिर्फ इससे नहीं कि
1: वो
0: हम क्या चाहते हैं
1: आज
0: पता
1: आपसे
0: चले कि
1: पहले
0: वो क्या
1: बात
0: चाहते
1: हो
0: हैं।
1: रही थी मास्टर साहब से, तो उन्होंने जिक्र किया कि मेरी कोई रिलेटिव है, उनके बच्चे माशाल्लाह गालबन 40-45 साल उन्होंने उम्र बताई, उन्होंने कहा सिस्टम तो उनको वीज़ा दे रहा है लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन उनके बच्चे जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे पढ़ गए, उनको वीज़ा मिलता रहा, लेकिन अब उन्हें मजबूरन काम करना पड़ रहा है, उन्होंने डेफिनेट उनके मियाँ अच्छी खासी पोस्ट पे है, उन्होंने उनको काम नहीं करवाया कि आप बच्चों को ज़्यादा लुक आफ्टर करें, उनके बच्चे सारे पढ़ गए हैं, लुक आफ्टर माँ ने की है, लेकिन चूंकि
0: बिल्कुल
1: कानून कायदा है ऐसा कि जब तक वो शराइत पूरी नहीं करेंगे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा पक्का।
0: बस ये आ गया ना, वो मेरी एक दफा लास्ट लेकर से भी बात हुई थी, कहता है ये बंद फोरम में तो वो भी मानता था, और ये तो अगर कुछ जितने अच्छे पॉलिटिशियन बंद फोरम में मान जाते हैं कि लॉ जो उन्होंने बनाया है, अगर वो 2% को अटैक करने के लिए बुला रहे हैं, तो फिर वो फिर भी बाकी 90-98% उसमें रगड़ा जाता है। कोई भी लॉ एक को बनाने के चक्करों में ही अच्छे बंदे मारे जाते हैं हमेशा।
1: लेकिन फिर ये जमहूरियत तो ना हुई ना, डिक्टेटरशिप हुई।
0: बस यही है जी, इसीलिए तो मैं भी इस चीज के बड़ा खिलाफ हूँ कि जो वन साइज फिट्स ऑल, इसके हाथ में मैं कभी भी नहीं रहा हूं। हर चीज का मतलब हर केस का एक अपना अपना मुद्दा पहलू होता है, ये कि एक सिस्टम के तहत देगी जो वन साइज फिट्स ऑल जो थ्योरी है, ये मुझे कभी पसंद नहीं है। और ये था यही मुड़वा रहने की पार्टी का, काफी चीजों में ऐसे ही है, वो कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, मतलब इतना यकहन तो ना हो चीजें जो सा है, तो इंशाल्लाह
1: लेकिन हम
0: इस
1: फिर
0: चीज
1: आते हैं
0: पे
1: पार्किंग
0: जरूर
1: की
0: गौर
1: तरफ भी
0: कराएंगे।
1: आते हैं, पार्किंग के मसाइल इन दिनों में आप भी देखते रहते हैं, आप भी जाते हैं, कल मेले पे भी आपने पार्किंग का सिस्टम देखा कि गाड़ियां जो इतनी ज़्यादा तादाद में, सब गाड़ियां तकरीबन जो है अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको नज़र आती है, पेट्रोल वाली डीज़ल वाली तो बहुत कम नज़र आती हैं गाड़ियाँ, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक
0: जी।
1: है, लेकिन पार्किंग का फिर भी मसले मसाइल बनते रहते हैं। लेकिन शहर में साइकिल के लिए को इतनी बड़ी जगह बनाई जाती है, साइकिलों की वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं, साइकिलों की वजह से दाएं बाएं मुड़ने में भी रुकावट पैदा होती है, उनके अलहदा बैन भी बनाए हुए हैं, और उसके बावजूद जो है साइकिलों के लिए हर किस्म की जो है इजाज़त है, प्राइवेट कंपनियां भी साइकिलें लॉन्च कर रही हैं, इलेक्ट्रिक साइकिलें लॉन्च कर रही हैं, तो क्या जब गाड़ियों को इजाज़त है फिर साइकिलों को इजाज़त है, तो गाड़ियों का प्रॉब्लम है, पार्किंग का प्रॉब्लम है, या साइकिलों का प्रॉब्लम है?
0: और ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही ये पता नहीं कौन बैठ बैठ के बना रहे होते हैं, कभी कभी इधर ब्यूरोक्रेसी का बड़ा कोई सिस्टम है, आपने देखा होगा आजकल जो सड़कों पे काम इधर करना शुरू किया हुआ वो लोग पिट रहे हैं कि यार इस प्लानिंग के तहत तुम लोग काम शुरू करते हो, एयरपोर्ट से आने जाने का मतलब जो उनसा इन्होंने बेड़ा वर्क कर दिया है। और मेरा एक बड़ा अच्छा अब दोस्ती बोले बन गया है मुड़वार में, कोपनहेगन में ही होता है वो। एक दफा पॉलिटिक्स छोड़ गया था ये साल डेढ़ पहले का, मतलब कि उनको मनेल वेल से थोड़ा सा पहले का तैयार नहीं करना, और वो बेसिकली एड डेनिश है, वो खुद ये पीको पीको छिकनी कर उसमें उसकी पढ़ाई है, वो ही काम करता है। कहता निशान यार मसला हमारी पॉलिटिक्स का ये भी हो गया कि जो अब मैं एक्सपर्ट हूं ना अपनी फील्ड का, कहता कुछ सुनता ही नहीं, अपनी मारे जा रहे हैं। कहता मेरा कोई नहीं दिल ये करने, मेरा कोई नहीं दिल, मगर फिर ये है कि उसे वापस ले आए क्योंकि बड़ा मेहनती बंदा है और बड़ा काबिल बंदा है। तो ये भी आप देखेंगे कि जो मुर्गा आने की पार्टी है इसमें काफी ऐसे बंदे आए हैं जो फाउली हिल्स अपनी की वजह से आए हैं, मगर अब मैं वो मेरे फोल्डन का जिस तरह आप देख रहे माशाल्लाह 11 साल फॉर्म रह चुकी है, 7 साल से अब वो प्राइम मिनिस्टर है मतलब डेनमार्क की, वो 24 साल की उम्र से आई हुई है फोल्के सिंह में, ना उसने आज तक कोई काम किया ना उसकी उस तरह से कोई है, मगर यह कि पॉलिटिक्स में वो शेर नहीं बने हुई है। तो ये एक बड़ा मसला हो गया है मुझे जो सबसे बड़ा लगता है एज ए टीचर भी, और के आजकल पॉलिटिशियन सारे पॉलिटिक्स पढ़ के बन जाते हैं यंग से, मतलब वही उनका उस शख्सियत से चले और कैरियर कैरियर बन गया ना पॉलिटिक्स, उसमें ये एक्सपीरियंस नाम की चीज खत्म होती जा रही है जो सबसे बड़ा मेरे एक लड़ाई रही।
1: इसका मतलब है कि ये भी अब सारे जो है पावर हासिल करना चाहते हैं कि इस सिस्टम में जाकर आपको पावर मिलती है
0: बस ये, और ये समझ आ गया उनको। आप देख लें मैं अभी पिछले दिनों सर्वे पर देख रहा था, मेरी कोई वो यंग बच्चे थे उनका कोई प्रोजेक्ट था, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया कि यंगस्टर्स को कैसे इन्वॉल्व करना चाहिए पॉलिटिक्स में, और मैं फिर कोई सर्वे देखे तो पहली बात तो राजा साहब ये मेरे ख्याल कोई डेनमार्क की टोटल आबादी में से 2 या 3% तो सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा है सिर्फ, और उनमें से बिल्कुल 1% नीचे पहुंच जाते हैं जब आप बोलते हैं कि यूथ इनका हिस्सा है, और हमारे फिर अगर आप कर लें जो गैर मुल्की बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो तकरीबन है ही नहीं कहीं, और वो जो दूसरे हैं वो बस बनते बनते चलते जाते हैं और फिर पावर पावर ऐसे आ जाती है, और इसीलिए तो बेड़ा गर्क हो रहा है मुल्क का काफी काफी जगह के स्कूल पेन है और क्योंकि सारे बैठे हुए हैं मगर इनको पता है कोई नहीं कि काम किया गया है नहीं कभी,
1: आपका नाम आ जाता है, कासम नजीर का नाम आ जाता है, काशिफ का नाम आ जाता है, जोहर का नाम आ जाता है, इसी तरह और भी जो अपना अरफान का नाम आ जाता है, जब आप लोग क्योंकि तनवीर तो सियासत छोड़ ही गया, नदीम फारूक का नाम आ जाता है, जब आपस में आप लोग बैठते हैं तो आप लोग किस तरह की बातें करते हैं?
0: मेरा तो अब माशाल्लाह सबसे अच्छी बड़ी गपशप है और ये है कि खुल के बात करते हैं एक दूसरे के साथ कि यार क्या करें क्या ना करें, पॉलिटिक्स को अंदर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हम सबको ये इस चीज पे तो अग्री है कि बड़ा ही स्लो प्रोसेस है अंदर जाके भी कि बंदा बोले कि अंदर अभी पहुंचाइए और मैं बस चेंजेस लाने लगा हूं, वो बड़ा औखा काम है, बड़ा स्लो बड़ा ब्यूरोक्रेटिकल अपना, मतलब ये हम काफी बात करते हैं कि चेंजेस आती हैं मगर बड़ी स्लो, तो बड़ा सबर वाला काम है वैसे ये
1: सफर वाला काम है। मैं वैसे बात करूं कहीं आप भी तो नहीं वो सारे आपस में बैठ के करते यार अब क्या करें, हमें वोट देने वाले भी अजीब अजीब डिमांड हमसे करते हैं।
0: नहीं ये है कि असल में मैं हम लोग जो इस दफा लड़े हैं उससे पहले तो अभी पता नहीं, मगर स्पेशल जो फॉल्क सिंह वाला लड़े हमारा अभी तक तो यही है जी कि एक ये स्ट्रेटजी है कि अगली दफा क्या करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं एज अ पाकिस्तानी बैकग्राउंड हम सारे इधर रहते हैं, हमारी अक्सरियत सारी इधर है, कैंडिडेट सारे एक ही ओमान में खड़े हो जाते हैं, दो ओमान में खड़े हो जाते हैं, हमें जाहिर अपनी प्रोफाइलिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी, आगे तक भी पहुंचना पड़ेगा कोशिश करके। अब ये जो फीन या कोई यूलर्ड के इलाके इनमें भी देखना पड़ेगा कि किस तरह कोई इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या शेलन, अब आप ऐसे ही देख लें कि शेलन में एक शेलन क्राइस भी होता है, उसमें भी हमारा कोई बंदा नहीं खड़ा होता, हम लोग कोपनहेगन और कोपनहेगन के ओमान में बस रह जाते हैं। तो ये एक गुफ्तगु सब भाइयों से चलती रहती है कि हम कुछ स्ट्रेटेजिकली इधर कर सकते हैं जिससे फायदा हो कि सारे मतलब इधर ओमान में आके खड़े हो जाए आपस में एक दूसरे के साथ कर कुर के लो जी ठप्पो ते कार चलो, उस चीज से बचने के लिए ये एक स्ट्रेटेजी सोचने वाली है। तो उसके बाद ज़ाहिर है वो तो आपको भी पता है, उस पर अब क्या रोना और कि ये कि कौम निकली नहीं फिर भी, और आगे निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इस दफा भी नहीं निकले जब
1: लेकिन इस
0: इतना
1: दफा
0: लगा
1: एक
0: है।
1: चीज एक एक चीज बड़ी फेलियर है कि शर्मिंदगी वह महसूस कर रहे हैं कि 40,000 हम लोग हैं, हम अपना एक पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बना सके।
0: जी, और बस ये है कि मगर इसमें अब शर्मिंदगी है, वही मैं कह रहा हूँ, इसमें बातचीत खत्म कर देनी चाहिए हमें, अब इसमें अब बैठ के कोई ढूंढना चाहिए, स्ट्रेटेजी ढूंढनी चाहिए कि कैसे होगा, और मिल बैठ के होगा, मशावरत है। एक पॉलिटिक्स में मैं मानता हूँ कंपटीशन भी होता है, मगर कुछ देर तक साथ भी चलना पड़ता है, जिस तरह आप देख लें हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा होता है। अब हम जब किसी भी पार्टी से लड़ते हैं एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, मगर लड़ तो एक सीट के लिए रहे होते हैं, इन दी एंड पर्सनल जो उनसे वोट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा। किसी को 800 वोट मिले, किसी को 802 मिल गया, वो सीट ले गया, मगर उससे पहले आपको एज अ टीम भी रेडी होना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। और हमें भी ये याद रखना पड़ेगा कि इन द एंड यस दौड़ अपनी अपनी, मगर जब तक मिल के स्टार्ट नहीं करेंगे फिर वो बिल्कुल ही रह जाएंगे सारे। तो इंशाल्लाह मिलकर स्टार्ट लेंगे इस दफा, और फिर आगे जो हिम्मत ज्यादा मारेगा इंशाल्लाह, जो मतलब ज्यादा बंदों को अट्रैक्ट कर सकेगा वो इंशाल्लाह अंदर जाके बैठे हमारी नुमाइंदगी करें।
1: ज़ीशान, आखिर में ये जो हमें आजकल मैंगो का फेस्टिवल का जो जोश चढ़ा हुआ है, पांच पांच छः छः प्रोग्राम कराने के लिए हम मेहनतें करते हैं, जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, तो क्या ये भी कोई एक ये क्या ट्रेडिशन बन जाएगा या ये इसमें भी कोई चीज़ इन्वॉल्व है?
0: पता नहीं जी, मगर इस साल तो मुझे तो बड़ी खुशी है, मैं तो वही देख रहा था कल, अब बॉनपी में हुआ है, अगले हफ्ते एल्बस लोन में हो रहा है, फिर एक और होएगा, और फिर 19 तारीख को इधर हमारे बैला रुख तक ले आया माशाल्लाह, इधर भी आ जाएंगे। तो ये हमारी ना कल भी मुलाकात हुई थी उधर, तो निकल रहे हैं, बच्चों को भी जरा शऊर आए दोबारा कि हमारे यार इधर प्रोग्राम होते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। मगर कल मैं वही आया था जब मेले से, मैं कह यार इधर भी हमें चाहिए कि लोग आए, यार पॉलिटिकल करना नहीं है मगर किसी तरह कोई, क्योंकि अब हम लोग काफी लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिनसे होती है, यंगस्टर से भी हुई थोड़ी बहुत जिन्होंने जाना, ओ आप ज़ीशान, हाँ ज़ीशान है, इधर आके हमारे लिए भी बड़ा अच्छा होता है आके गुफ्तगू करना, बात करना। इस साल असल में फॉल्कर सेंस वेल हो चुका है, तो इसलिए लोगों का थोड़ा थोड़ा अभी शऊर है, अगले साल जब होगा शायद नहीं होगा, मगर इसको किस तरह बनाई रखना हमने, तो वो मैं अब सोच रहा था कल घर आके कि किस तरह इनको हम थोड़ा सा ऐसे सोसाइटी को भी स्ट्रांग करने में, कम्युनिटी को स्ट्रांग करने में भी इन मेलों को यूज कर सकते हैं, क्योंकि तो माशाल्लाह तीन तीन चार चार तो हो रहे हैं, और जैसे आप देख रहे हैं हमारी कोई तंजीम पोलिटिकल होना नहीं चाहती, हमारी कोई तंजीम मतलब उस तरह ऑर्गेनाइज होना नहीं चाहती, मगर ये है कि बेहतरी चाहते हैं हमारे लिए, तो कुछ स्कीम लगा ही रहा था कि किस तरह बातचीत हो सकती है, इतने बंदे आते हैं, स्टेज भी लगा होता है कि कुछ हम उसमें ना।
1: नहीं, उसमें जो है पॉलिटिशियन को चाहिए कि वो तकारीर भी करें, लोग उनसे सवालात भी करें, अच्छे माहौल में सारी बात होनी चाहिए ना, खाली हम लोग
0: बिल्कुल
1: खाने के मूड में चले जाते हैं, मेरी ज़रूरत है, मैंने खाना खाना है, बच्चों की ज़रूरत है, उन्होंने आइसक्रीम खानी है या फ्रेंचाइज लेनी
0: जी
1: है,
0: जी
1: उसके अलावा
0: बिल्कुल
1: भी इंटरेस्ट होना चाहिए ना।
0: क्योंकि बिल्कुल क्योंकि मैं बिल्कुल इसको ये सोच रहा था, जिस तरह चले एक लॉस डे तो होता है वो तो बड़ा होता है, मगर जिधर डेनमार्क भी आप देखें फर्स्ट नहीं आता है, उधर ऐसे मेले ही कर लेना, एक तरह के मेले लगते हैं, स्पीचेस होती हैं थोड़ी बहुत, बीच में थोड़ा शुगर मेला होता है, इसी तरह आप सेंथेंस ये 23 तारीख को जो इनका जलाने का है उसमें भी पोल छेला होती हैं, आते हैं पोल छेला करने जाते हैं, माशाल्लाह मैं भाई नदीम का पढ़ रहा था कि भाई नदीम कहीं गए हुए थे तो टॉस्ट्रोप अपने पोल छेल करने के लिए, तो मतलब फेस्टिवल्स का हिस्सा भी हो सकता है ये सोसाइटी में इन्वॉल्व करना। माशाल्लाह कल एक बच्ची मिली मुझे अपनी कि नई शिप शुरू कर रही है, कहती भाई मुझे बड़ा शौक है मैम पॉलिटिक्स का, मैं कहा जी आप लोगों की जरूरत भी है, मैंने कहा आपका सांसद सही पढ़ोगी, कहती है बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं कहा ठीक है, मैं किसी मदद की जरूरत हुई कभी मैं कहा मुझे फाइन कर लेना, तो मुझे निकलने का बड़ा फायदा होता है, और जबकि मैं वही मजाक कर रहा था, मैं कल इस नीयत से मेले पे गया था, मैंने गाड़ी चेंज करनी थी और 3-4 घंटे वैसे ही लग गए उधर, शुगर शुगर लोगों के साथ लगाते, चाय पीते, कुर्सी खाते, तो बड़े अच्छे वैसे हो रहे हैं ये फेस्टिवल, तो इनमें ये है कि किसी तरह हम अपनी आइडेंटिटी स्ट्रांग करें, अपना कोई कोई मुद्दा जरा स्ट्रांग करें, तो फिर इंशाल्लाह, क्योंकि बड़ी मेहनत देखे ना जिन्होंने कल किया है, मैं उनको भी देख रहा था, बड़ी मेहनत लगती है ऐसे फेस्टिवल करने में, छोटा करें बड़ा करें जिधर भी करें, बड़े बंदों की मैन पावर लगती है, तो मैं वही कह रहा हूँ हमारे इतने लोग हैं जो एक दूसरे हम कम्युनिटी के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह शुगर मेला भी और साथ सीरियसनेस दोनों साथ साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह।
1: सीरियसनेस जो है वो लाजमी होनी चाहिए। बहरहाल जिन जो मेहनत करते हैं डेफिनेट हो मेहनत करते हैं तो कुछ कमाते भी हैं, अगर मेहनत नहीं करेंगे कमाएंगे भी कुछ नहीं।
0: बिल्कुल। और ये है कि बस इंशाल्लाह थोड़ा मिलकर अगर स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश है अभी इन मेलों में खुद भी
1: मेलों में
0: आऊंगा
1: पार्टियों
0: आगे
1: को
0: लगेंगे
1: आना चाहिए जी, सियासी पार्टियों को आना चाहिए, उन्हें अपने स्टॉल लगाने चाहिए और कुछ फंक्शन में जो पार्टिसिपेट भी करना चाहिए।
0: जी जी क्योंकि ये तो देखिए अभी बेलागोप में खामा माकिर होगी, वो भी इस साल हम मुर्गा रहने बैठे हुए थे, अच्छा जी इस साल हमने स्टॉल लगाना है कि नहीं लगाना। बेलागोप में सोशल डेमोक्रेट हर साल लगाता है, तो ये है कि मतलब और हम सारे अगर एक जगह भी आके खड़े हो जाए उधर, बस लोगों का एक बना रहेगा ना कि यार अच्छा यार सारे आए हुए हैं इकट्ठे मिल के खड़े हैं, चलो गुफ्तगू होगी इंटरेस्ट होगा। तो ये एक आइडिया मेरे जहन में कल आया था, अब आपके रेडियो के जरिए थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। इंशाल्लाह जो हमारे ऑर्गेनाइज करने वाले उनसे भी इंशाल्लाह कांटेक्ट करेंगे। और
1: लेकिन
0: जो
1: मसला
0: बाकी
1: ये है
0: हमारे
1: कि अब
0: बहन
1: सब
0: भाई
1: डैन सियासत करना चाहते हैं, लेकिन वो जो हमारे अपने अपने जो सियासी जो हमारी पार्टियां बनी होती हैं, हमारे रूट्स बने होते हैं जिसे हम जमहूरियत का नाम देते हैं, तो ज़्यादा फोकस हम उस तरफ करते हैं, ज़्यादा इधर नहीं फोकस करते कि हम वोट क्यों नहीं देते, पार्टियों में मेंबर डैनिश पार्टियों के मेंबर क्यों नहीं बनते या इन पार्टियों में जाते क्यों नहीं है, इस तरफ हम तवज्जो नहीं देते। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं जी हार गए हम, इतने ज़्यादा बंदे थे, हम पार्टिसिपेट उस तरह का करते नहीं हैं, तो गिले बनते ही बनते हैं, कभी मीडिया से बनते हैं, कभी सियासतदानों से बनते हैं, कभी कम्यून की तरफ हम चल पड़ते हैं, कभी पार्लियामेंट की तरफ चल पड़ते हैं और गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते कम कर क्या रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने कि जाहिर है करना खुद से शुरू चाहिए, गिला भी आप करें मगर यह है कि घर बैठ के नहीं बाहर निकल के काम करके साथ साथ गिला करें। मेरी असल में हमेशा ये सोच रही है कि गिला अगर करना है यार तो मतलब इस पे नहीं करना कि यार सुनी सुनाई बातों पे घर बैठे बैठे गिले करने, बाहर निकल के देखो जहाँ फिर नहीं आपको ठीक लगता कुछ फिर गिला आप कैसे भी हो यार, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। मगर
1: मैं कल बात कर रहा था, मैंने कहा ये जो ट्रैफिक मिनिस्टर है उन्हें खुद गाड़ी चलानी चाहिए, हर रोज जो है ना हफ्ते में 7 दिन एक बार चला के देखें लगातार, ताकि इनको पता चले ट्रैफिक के मसाइल क्या है।
0: बिल्कुल मेरा तो दिल करता है हफ्ते में एक एक दिन कम से कम इनको जो इंफ्रा मिनिस्टर है वो किसी फ्लाई इन जाए एक एक दिन करके स्कूल वाला जरा स्कूल आके देखे। ये दुनिया बड़ी अंदर बैठ के चलाना बड़ा मुश्किल है मगर ऑन फ्लोर होके बड़ा डिफरेंट होता है काम करना। तो इसीलिए देखे ना मैं आज तक बड़ा बड़ा काम था सारे कहते हैं आगे आगे क्यों नहीं आगे क्यों नहीं जा रहे थे, मैं यार मुझे स्कूल में यार बड़ा ही मजा आता है इन बच्चों के साथ, इनको इधर से आगे भेजना जो उनसे है वो बड़ा पसंद है मुझे। अब एक नई बात निकली वो जो आपको भी पता होगा गवर्नमेंट अब निकाल रही है लिस्ट निकाल रही है जी हुनर तौलिस स्कूल, उनमें एक बेलारूस का स्कूल भी है और हमें शक है कि उनमें से वो स्कूल हमारा भी हो सकता है। तो मैं कह यार अब ये देख लो स्कूल में मेरा रहना और ज्यादा जरूरी हो गया, जब ये स्कूल इस लिस्ट पे आ गया फिर तो मेरा रहना और भी ज्यादा जरूरी हो गया, मैं इधर से नहीं जा सकता क्योंकि इस मतलब ऐसी आपके हमें उठानी चाहिए मिलते यार मेरा लोकल स्कूल है वो इस लिस्ट पे है उसको इससे निकालना
1: जाना चाहिए। जो स्कूल है वो मिस्ता होता है या होती है उन्हें भी जाने क्लासों में बैठना चाहिए आगे पीछे देखना चाहिए, ये खाली बैठ के मीटिंग कर ली ग्रुप मीटिंग होगी उसमें अक्सरियत ने वोट दे दी जो बिल पास कर लिया।
0: जी जी बड़ा बड़ा होता है जी इधर कमून के लेवल पे तो अब मेरा थोड़ा कॉन्टेक्ट भी डलता है बार बार से काफी करता रहता हूँ मतलब ये कुछ का कार है।
1: बहरहाल आप मीठी मीठी जबान में बड़ी बातें कह जाते हैं, आपका बहुत शुक्रिया छुट्टी वाले दिन आपने टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया।
0: आपका शुक्रिया राजा साहब, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है सबसे
1: इंशाल्लाह। समय नाजरीन ये थे जीशान जिनकी आप बात सुन रहे थे, वो बड़ी खुल के बात करते हैं, अच्छे मूड में बात करते हैं और दोस्ती की शक्ल में बात करते हैं, वो चाहते हैं तब्दीलियाँ हों, वो चाहते हैं कि हर चीज़ में तब्दीली हो, लेकिन उसका तरीक़ाकार भी होता है। तो हमें चाहिए कि हम जो है ना वो ज़्यादा डैनिश पार्टियों में जाएं, कम्यून में जाएं, पार्लियामेंट की तरफ तो जो दें कम्यून की तरफ तो जो दें, اور باقی جو سیاست ہے وہ بشک کرتے رہیں، لیکن جو آپ کی سیاست ہے جہاں آپ کے بچوں کا مستقبل ہے اس طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ سامعین ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔
2: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।